0: मिनिटांची ही गाडी 14 तास 35 मिनिटं उशिरा धावत आहे. 12409 गोंडवाना एक्सप्रेस 8:20 नियोजित वेळीच, 12295 संघमित्रा एक्सप्रेस 8:35 नियोजित वेळीच धावत आहे. 61120 आमला नागपूर मेमू 8:45 नियोजित वेळीच, 12105 विदर्भ एक्सप्रेस 8:55 नियोजित वेळीच धावत आहे. 16032 अंदमान एक्सप्रेस सकाळी 9 नियोजित वेळीच, 22512 कर्मभूमी एक्सप्रेस 8 ही गाडी 1 तास 5 मिनिटं उशिरा धावत आहे. 12135 पुणे नागपूर एक्सप्रेस 9:20 नियोजित वेळीच नागपूर रेल्वे स्थानकावर पोहोचेल. 12860 गीतांजली एक्सप्रेस 7:40 ही गाडी 1 तास 37 मिनिटं उशिरा. 12721 दक्षिण एक्सप्रेस 9:20 नियोजित वेळीच धावत आहे. 22692 बंगलोर राजधानी 9:25 नियोजित वेळीच. 22905 ओखा शालिमार एक्सप्रेस 9:30 नियोजित वेळीच धावत आहे. 12129 आझाद हिंद एक्सप्रेस 9:50 नियोजित वेळीच. 12145 लोकमान्य टिळक टर्मिनस पुरी एक्सप्रेस 10:15 नियोजित वेळीच. 12616 ग्रँड ट्रंक एक्सप्रेस 10:15 नियोजित वेळीच. 22138 प्रेरणा एक्सप्रेस 10:25 नियोजित वेळीच. 20806 न्यू दिल्ली विशाखापट्टणम एपी एक्सप्रेस 10:25 नियोजित वेळीच. 11040 महाराष्ट्र एक्सप्रेस 10:40 नियोजित वेळीच धावत आहे. 12844 पुरी एक्सप्रेस 10:50 नियोजित वेळीच. 03252 12:45 ही गाडी 10 तास 14 मिनिटं उशिरा. 12792 सिकंदराबाद एक्सप्रेस 11 नियोजित वेळीच आणि 12967 जयपूर एक्सप्रेस 11:05 नियोजित वेळीच धावत आहे. 03251 12:05 ही गाडी 1 तास 9 मिनिटं उशिरा. 12615 ग्रँड ट्रंक एक्सप्रेस 11:25 नियोजित वेळीच धावत आहे. अधिक माहितीसाठी दूरध्वनी क्रमांक आहे 139. रेल्वे गाड्यांसंबंधीची सूचना आपण ऐकलीत आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून. 6 आहेत. श्रोते हो, काही क्षणातच दिल्ली केंद्राच्या बातम्या सहक्षेपित करीत आहोत आणि त्यानंतर 6:05 कार्यक्रम अर्चना.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे. इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है. अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे. वे स्पेन के चैंबर ऑफ कॉमर्स सीईओई और आईसीईएक्स स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. श्री गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे. वे भारत फिनलैंड व्यापार गोल में सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान

0: किसान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौ वहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंदाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मध्यम लहरी 512.8 दशांश मीटर म्हणजेच 585 किलोहर्ट्झवर आपण ट्यून केलं आकाशवाणीचं नागपूर केंद्र। श्रोते हो, आता ऐकवीत आहोत अर्चना हा भक्तिगीतांचा कार्यक्रम। कार्यक्रमात सुरुवातीला लता मंगेशकर यांच्या आवाजात शांता शेळके यांचं गीत

0: या गीताबरोबरच सुगम संगीताचा हा कार्यक्रम आता संपवित आहोत. हा कार्यक्रम आपण ऐकलात आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून. 8 वाजता आहेत काही क्षणातच दिल्ली केंद्रावरून समाचार प्रभात. 8:15 मॉर्निंग न्यूज आणि 8:30 मराठीतून बातमीपत्र दिल्ली केंद्रावरून सहक्षेपित करीत आहोत. बातम्यांसाठी प्रतीक्षा करा.
1: पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं.
2: चल है तो हम है. आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं. इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा. मुख्य समाचार. पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू. इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए. 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते. विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर. मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया. अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा. अब समाचार विस्तार से. पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं. इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे.
4: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था. राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है. इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है. निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत DIG रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं. कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिस कर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा. संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत.
3: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगन

0: यान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
1: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशद गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
3: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो एआई आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री दहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3

0: का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रूपए, राजगीर के लिए 4000 रूपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रूपए और कैमूर के लिए 6000 रूपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
1: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जंग फिर शुरू, हॉर्मूज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और यूएई को बनाया निशाना। वहीं

0: भारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, एक लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का SIR ब्यौरा अनिवार्य, दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, देव भूमि से रूठे देव, पर्यटकों को बुला रहे पहाड़ पर अपने लोगों से टूट रहा नाता, राज्य के 15% गांव अब निर्जन, पलायन करने में युवा आगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। 2 न्यू एंटी क्राइम लॉज पास्ड बाय वेस्ट बंगाल असेंबली कम इन टू फोर्स इन द स्टेट टुडे। ISRO successfully carries out 3 major tests of Gaganyaan crew module systems. 5 Indian students win gold medals at 56th International Physics Olympiad 2026. India secures world number 1 rank jointly with other countries. IMD forecasts heavy rainfall over northeast India, West Bengal and Bihar during next 2 to 3 days. US launches fresh strikes on Iran. And Yannick Sinner beats Alexander Zverev to retain Wimbledon men's singles title. And now the news in detail. In West Bengal, 2 new anti-crime laws come into force in the state today. State Governor R.N. Ravi has given his assent to the bill related to the control of anti-social activities. In June this year, the Assembly passed the Stringent Anti-Crime Bills, the West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026. More from our correspondent.
3: Under the West Bengal Public Safety and Control of Antisocial Activities Act 2026, a person involved in antisocial activities or one who is likely to engage in such activities in the future may be placed under preventive detention. Such a person can be detained for a maximum period of 1 year. The state government says the new law will enable quicker and stricter action against antisocial activities, riots, attacks on police personnel and organized crime. Chief Minister Shubhendu Odhikari has earlier stated that violence or disruption of public order in the name of protest will not be tolerated. He also expressed hope that the new law will play an important role in ensuring the safety and security of women and children. Sandeep Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
2: The Indian Space Research Organization says it has successfully carried out 3 major tests of the Gaganyaan crew module systems. More from a correspondent.
4: The first test pertained to ensuring an upright position for the crew module after splashdown in the sea, considered one of the most important crew safety requirements. To do this, a stored gold gas-based uprighting system was developed and tested. The second test involved examining the separation of the umbilical mechanism that serves as a link between the crew module, where astronauts live, and the service module, which provides power and propulsion. The third test

0: मध्यम लहरी 512.8 दशांश मीटर म्हणजेच 585 किलोहर्ट्सवर आपण ऐकता आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून प्रसारित होणारे कार्यक्रम 10 वाजतायत. श्रोते हो, काही क्षणातच कॅन्सर फाउंडेशन आणि मानधनिया कॅन्सर हॉस्पिटल हॅलो डॉक्टर हा लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करीत आहोत.
1: श्रोते हो, प्रसारित करीत आहोत कॅनकेअर फाउंडेशन अँड सुशील मानधनिया कॅन्सर हॉस्पिटल रामदासपेठ नागपूर हॅलो डॉक्टर हा लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम काही क्षणातच. श्रोते हो, नमस्कार. कॅनकेअर फाउंडेशन अँड सुशील मानधनिया कॅन्सर हॉस्पिटल रामदासपेठ नागपूर हॅलो डॉक्टर या लाईव्ह फोन इन कार्यक्रमात आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत. श्रोते हो, आजचा विषय आहे कर्करोग आणि याविषयी मार्गदर्शन करण्यासाठी ते उपस्थित आहेत तज्ज्ञ डॉक्टर सुशील मानधनिया. आणि आपल्याला काही प्रश्न आहेत, काही शंका आहेत तर जरूर विचारा. त्यासाठी फोन नंबर्स असे आहेत 25 29 266 म्हणजेच 2529266 आणि 25 60 101 अर्थात 2560101. नागपूर बाहेरून फोन करणाऱ्यांनी एसटीडी कोड लावायचा आहे 07 12 07 12. श्रोताओ नमस्कार. कॅनकेअर फाउंडेशन अँड सुशील मानधनिया कॅन्सर हॉस्पिटल रामदासपेठ नागपूर हॅलो डॉक्टर इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. श्रोताओं, आज हमारा विषय है कर्करोग और इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करने यहाँ उपस्थित है तज्ञ डॉक्टर सुशील मानधनिया. आप सवाल पूछ सकते हैं, कुछ प्रश्न है तो ज़रूर पूछिए. फ़ोन नंबर्स इस प्रकार हैं 2529266 और 2560101. नागपुर बाहर से आप फोन कर रहे हैं तो एसटीडी कोड जरूर लगाएं. जी हाँ, 07 12 07 12. डॉक्टर सुशील मानधनिया कार्यक्रम में इस आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: गुड मॉर्निंग, नमस्कार. मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा, सुशील मानधनिया कैंसर हॉस्पिटल नहीं है, वो मानधनिया कैंसर हॉस्पिटल.
1: जी जी जी.
2: और आज का जो विषय हम सोच रहे हैं कि कैंसर फियर मिथ्स एंड फैक्ट्स.
1: जी जी जी. मानधनिया कैंसर हॉस्पिटल के आप आए हैं और सभी को पता है सुशील मानधनिया हमें बात करें, हमसे बात करें. जी जी. डॉक्टर, आज हम कैंसर इस विषय पर बात करें, इसके बारे में बहुत से मीथ्स हैं और कुछ फैक्ट्स, तो गलत फहमियाँ भी हैं और तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे. तो कैंसर जब कीमोथेरेपी की जाती है तो कीमोथेरेपी में भी बहुत गलतफहमियां रहती हैं या बहुत मिथ्स हैं कि क्या ये सही है, क्या उसके साइड इफेक्ट्स हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
2: बहुत अच्छा, क्योंकि जनरली ये जो टॉपिक हमने लिया है, लास्ट वीक वी हैड 4-5 ऐसे मरीज आए थे जो ये खास करके ऐसे भ्रमित चीज़ों के कारण काफ़ी डिले हुए थे. किसी में ट्रीटमेंट का डर था, किसी में ये था कि मुझे कैंसर है ही नहीं, किसी में ये था कि भाई मेरे घर में किसी को बीमारी थी नहीं, इसलिए मैंने टेंशन ही नहीं लिया चीज़ का. मुझे लग रहा था कि मुझे तो है ही नहीं ये बीमारी. कोई कुछ किसी प्रकार की अलग तरह की ट्रीटमेंट चल रही थी जिसके कारण वो बहुत ही आश्वस्त था कि भाई ये तो बीमारी है ही नहीं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी कुछ तरह का अलग तरीके से ट्रीटमेंट चल रही थी. तो मैंने सोचा कि इसका मतलब है कि हम पिछले 7 साल हो गए मुझे, इतना हम अवेयरनेस करने के बावजूद भी हम शायद लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या हमारी अवेयरनेस हमारी मुझे नॉट मेरी हमारी सोसाइटी की, हमारी लोगों की, डॉक्टर्स की, मीडिया
1: जी,
2: की
1: जी.
2: तो उसके कारण काफ़ी ट्रीटमेंट के बारे में मिथ्स है, मुझे गैर समझ आणि खूब भीति है, दैट इज़ फियर.
1: अच्छा.
2: बट ये दोनों को हम एड्रेस कैसे कर सकते, दैट इज़ बाय द फैक्ट्स. सच में ये क्या है, तो ये जो फैक्ट्स है ना, ये पब्लिक को उनके भाषा में बताना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इनके दिमाग में एक बहुत ज़बरदस्त डर तो है ही कैंसर के बारे में, और वो डर एक बहुत सारे फियर्स के जो है, ये बहुत सारे भ्रांतियाँ मिथ्स के कारण है. कैसा होता है ना कि जैसे अब कीमोथेरेपी का आपने जैसे उदाहरण लिया
1: अभी, जी, जी.
2: कि हर पेशेंट को ऐसा लगता है ना कि कीमोथेरेपी मुझे बहुत ज़रूरी है, पहला कभी कभी ऐसा लगता है. तो कई बार कैसा होता है कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर है या ओरल कैंसर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल ओरल कैंसर,

0: होता है, तो वो ऑपरेशन कई बार पेशेंट बाकी सब मिथ को छोड़ दे तो वो इसलिए भी नहीं करते कि मुझे बाद में आपने बोला था रेडिएशन भी लगेगा, कीमो भी लगेगा, तो कई बार ऐसा होता है कि स्टेज वन की बीमारी भी वो ऑपरेट नहीं करते।
1: जी।
0: तो उससे क्या होता है कि इनको तो कीमो और रेडिएशन की जरूरत होने वाली नहीं है ना, पर वो जो मिथ है उनके दिमाग में या डाल दिया गया मिथ लोगों ने, या क्या होता है, आज से 10 साल पहले ना दुनिया बहुत थोड़ी अलग थी, आज से 10 साल बाद अभी दुनिया बहुत ही डिफरेंट हो गई है।
1: जी।
0: तो देर आर लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स, गूगल एक्सपर्ट्स है, व्हाट्सएप एक्सपर्ट्स है, ये जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स है उसके कारण बहुत आलतू फालतू मसाला मिलते रहता है
1: हाँ
0: इनको।
1: डॉक्टर, इसके बारे में
0: तो
1: हम
0: हाँ
1: चर्चा
0: जी,
1: करेंगे, कॉल लेते हैं। हेलो,
2: हाँ हेलो मैडम, नमस्कार आणि सर, माननीय डॉक्टर मांडे सरांना पण नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: सर मला एक 3 प्रश्न होते माझे, की कॅन्सरच्या बाबतीत जे आपले बॉडीचे वेगवेगळे पार्ट्स आहेत, विशेषतः ॲब्डॉमन मध्ये त्याच्यामध्ये बरेच पार्ट्स आहेत, तर याच्यामध्ये जर कॅन्सर ला सुरुवात झाली प्रायमरी स्टेज मध्ये, तर ताप वगैरे येतो का सर
0: ओके।
2: त्याच्यामध्ये, सुरुवातीचे काही तापा वगैरे येतो का कॅन्सर मध्ये? मी असं ऐकलंय की कॅन्सर कॅन्सर मध्ये ताप वगैरे काही येत नाही। आणि असा कोणता दुसरा प्रश्न असा आहे की कोणत्या बॉडीच्या मध्ये कॅन्सर निर्माण होत असेल तर त्याची खूप उशिरा आपल्याला लक्षण लक्षात येतात? आणि मुख्य म्हणजे ॲब्डोमन मध्ये जे पोटामध्ये जे कॅन्सर असतात त्याची लक्षणं काय असतात, आणि त्याच्यामध्ये ताप येतो का सर, हे
0: व्हेरी
2: विचारायचं
0: गुड,
2: तुम्हाला।
1: बर,
2: हा,
1: आपलं
2: बहुत
1: नाव काय?
2: माझं नाव शैलेश।
1: बर,
0: शैलेशजी, खूप खूप आभारी आहे मी तुमचं, कारण की हे दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, और जे अमॉंग दी आमचे मिथ्स म्हणजे जे गैरसमजेमध्ये पण येतो, की जनरली जैसा पहला प्रश्न था कि कैंसर में बुखार आता है क्या, तो कैसा होता है कि देर आर सर्टन कैंसर जहाँ पे ना अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड फीवर आते रहता है, और
1: अच्छा।
0: वो एक्सप्लेन ही नहीं होता, देर इज़ नो फोकस। हम पूरा चेक कर लेते हैं, जनरली जो फिजिशियन चेक कर लेते हैं तो दे डोंट फाइंड एनी फोकस। तो अगर कैसे जैसे कोई अबडोमिन में कुछ नहीं दिख रहा है, लंग्स में कुछ नहीं दिख रहा है, जीआई सिस्टम में कुछ नहीं दिख रहा है, स्किन में रैश नहीं है, कभी कभी पेरिनल एब्सेस होते हैं ऐसे लोगों को, स्किन के रैशेस होते हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स भी रूल आउट हो जाते, तो ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना जैसे बुखार है, तो देन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मेलेगनेंसी। तो
1: अच्छा
0: मोस्ट कॉमन जो मेलेगनेंसीज हम फीवर के साथ देखते हैं, दैट इज़ लिम्फोमास।
1: अच्छा
0: उसमें
1: अच्छा
0: एक तरह का फीवर रहता ही है, उसमें लो ग्रेड फीवर रहता है इसमें, और कुछ कुछ सॉलिड ट्यूमर्स में भी हमको बुखार के रूप में उसकी जानकारी या उसके सिम्टम्स मिल सकते हैं। सिम्टम म्हणजे लक्षण म्हणतात
1: जी
0: त्याला
1: जी
0: आपण,
1: जी
0: आणि कोणते कॅन्सर्स उशिरा डायग्नोस होतात म्हणजे लेट डायग्नोसिस। तो मोस्ट कॉमन जो कॅन्सर है जो सबसे लेट डायग्नोसिस हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है ना, दैट इज लंग कैंसर, और वी हैव ए वेरी
1: अच्छा
0: गुड डेटा फॉर दिस। हमारे पास एक जो हमारा हॉस्पिटल का डेटा है लंग कैंसर में, हमने देखा, आई विल टॉक अबाउट द परसेंटेज, मैं परसेंटेज में बात करूंगा, नंबर्स में नहीं।
1: जी।
0: तो आउट ऑफ 100% जो लंग कैंसर के मरीज हम देखते हैं ओपीडी में, या जो हमारे को रेफर होके आते हैं या तो डायरेक्ट आ जाते, कई बार बहुत कम बार आते डायरेक्ट, तो आउट ऑफ दिस 100% नियरली 95% प्लस आर लेट स्टेज, आइदर
1: अच्छा
0: दे आर इनक्यूरेबल और दे आर मेटास्टेटिक, मुझे बहुत स्प्रेड
1: जी
0: हुए हुए।
1: जी
0: तो ये बहुत ही लेट डायग्नोस होते हैं बिकॉज इनके सिम्टम्स भी बहुत लेट आते हैं।
1: अच्छा
0: और देखेंगे ओवेरियन मेलेगनेंसीज, दे कम वेरी लेट, मुझे जनरली स्टेज 3 या स्टेज 3C के आसपास ही मिलती है। जीआई मेलिग्नेंसीज जो है ना, और जैसे गैस्ट्रिक कैंसर्स वगैरह, कई बार पता ही नहीं चलते हैं बिकॉज इनके सिम्टम्स बड़े वेग होते हैं,
1: अच्छा
0: और वो कई बार ना गैसेस, डिस्टेंशन, पोट
1: हाँ,
0: फुगला सा, पोट
1: एसिडिटी
0: फुगला सारा, तो
1: जी।
0: एसिडिटीज आए, मतलब स्ट्रेस होता म्हणून होतो, कफ है तो मैं थोड़ा सा ना ये गर्मी ठंडी में मुझे कफ होता ही है सर, कभी कभी ठसे में से खून आता ही है, मैं तो बाहर ट्रैवल करता हूँ तो पोल्यूशन के कारण हो रहा है, तो ये
1: जी
0: सब चीज़ें के कारण ना कई बार देर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन बिटवीन दी सिम्टम्स। तो ये सिम्टम्स को कई बार पेशेंट्स या जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स होते हैं, कई बार उसको जनरल प्रैक्टिशनर्स उसको एक नॉर्मल नॉन मेलिग्नेंट सिम्टम्स करके भी ले सकते हैं,
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: कई बार ऐसा होता है कि हर चीज़ को हम कैंसर नहीं देख पाते, और प्राइवेट
1: हाँ,
0: प्रैक्टिस जो
1: कुछ
0: जनरल
1: लोगों को
0: प्रैक्टिस में
1: बहुत सालों से खांसी रहती है या
0: तो दैट
1: ये
0: इज द रीज़न। पर इसमें ना कैसे एक रेड फ्लैग्स होते हैं,
1: जी।
0: वो रेड फ्लैग्स समझना बहुत जरूरी होता है, और जहाँ हम जो देखते हैं ना, जैसे जो जनरल प्रैक्टिशनिंग डॉक्टर्स होते हैं, दे आर फ्लडेड विद द पेशेंट्स, जैसे अभी
1: जी
0: अभी
1: जी
0: बारिश चालू हो गई, एक एक डॉक्टर 100-125 पेशेंट देख रहे हैं, तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द डॉक्टर हिमसेल्फ कि वो उसको 5 मिनट में हिस्ट्री ले, उसकी 5 मिनट बैठ के हिस्ट्री ले ले उसकी, हाँ काय तो रहता आप हैं सर, हो गया, तो
1: जी
0: क्योंकि वो संभव ही नहीं हो पाता है।
1: हाँ
0: तो दैट
1: हाँ
0: इज़ द रीज़न कि कई बार थोड़ी थोड़ी ये जो इनिशियल सिम्टम्स है मिस होने की संभावना रह सकती है इसमें, ठीक है,
1: अच्छा
0: बट देर आर स्मार्ट पीपल जो फट से पकड़ भी लेते हैं इस चीज़ों
1: जी
0: को, तो दैट इज़ द रीज़न कि लेट डायग्नोसिस। और तीसरा रहता है कि भाई पेट के बीमारियों में क्या सिम्टम्स, मुझे पेट के कैंसर में, पेट मुझे पेंडोरा बॉक्स बोलते हैं उसको, जादू का पिटारा है, उसमें सब आ गया,
1: जी
0: स्टमक है, कोलॉन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, फिर इसके बाद में किडनीज है, लीवर है, पेनक्रियास है, कोलेंजिक जो बाइल डक्ट्स वगैरह, लिम्फ नोड्स है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डब्बा है पूरा,
1: जी
0: तो इसके सिम्टम

0: कॉल लेते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहेब।
2: नमस्कार, वाघ साहेब बोला।
1: सर मला विचारायचं जसं आता खूपशा ऑर्गन्सवर कॅन्सरची पहिली स्टेज दुसरी स्टेज येते, खूप लोक म्हणजे सर्जरीला भीतात, ते म्हणतात की सर्जरी केली तर मला म्हणजे जास्त त्रास होईल, मला बाकी ट्रीटमेंटनी जर ठीक झालं चांगलं होईल, तर सर्जरीमुळे पूर्ण म्हणजे जसं लंग कॅन्सर आहे किंवा ओरल कॅन्सर आहे, ते सर्जरीनी पूर्ण ते कॅन्सर निमूळ होऊ शकते का, व सर्जरी झाल्यावर बाकी ट्रीटमेंट आवश्यक आहे का?
2: व्हेरी गुड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसका उत्तर ना थोड़ा अलग तरीके से देता हूँ। पेशेंट कई बार हमको पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, जैसे ब्रेस्ट कैंसर का मरीज है, जैसे आपने दूसरे नंबर पे पूछा था ओरल कैंसर, तीसरा पूछा था आपने लंग कैंसर
0: जी।
2: तो मुझे पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप बिना ऑपरेशन के ये संभव नहीं है क्या? तो मेरा उत्तर दूसरा रहता है कि भाई ये आपके नसीब अच्छे कि आपका सर्जरी लायक संभावना है, क्योंकि सर्जरी इज द ओनली क्योर इन दिस डिसीज। ठीक है, अगर हम क्योर चाहते तो हम सर्जरी दो जगह नहीं करते ये बीमारी में। एक तो जब बीमारी स्टेज फोर है या मेटास्टेटिक है, जैसे समझो ओरल कैंसर है, मुख का कैंसर है।
0: अच्छा,
2: आबा का सुने होंगे आपने ना, आरआर पाटिल, ही केम विद स्टेज फोर कैंसर, पूरा छाती में गया था, तो ही डाइड विद इन वन मंथ। पर सेम इज विद शरद पवार, उनकी 5 सर्जरी होगी बट इट वॉज लोकल, बट ही डिड सर्जरी फॉर ऑल 5 टाइम्स, 3-4 टाइम्स। तो देखो आज भी ही इज डूइंग वेरी वेल, तो दैट मीन्स की सर्जरी इज क्योर। पर आपको सही समय पर सही बंदे से करना बहुत जरूरी है इसमें, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इसकी, कई बार सर्जरी के बाद मैंने देखा है कि पेशेंट लॉस्ट टू फॉलोअप हो जाते हैं, तो सर्जरी के बाद में भी हिस्टोपैथोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल वापस ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर दोनों का देता हूं मैं।
0: अच्छा।
2: अगर ये एक ही सर्जरी है जिसमें अगर समझो सर्जरी में वाइल्ड लोकल एक्सीजन, जब बीमारी निकल गई पूरी जड़ से और लिम्फ नोड्स भी निकाल दिए गए, उसके बाद में पेशेंट टर्न अप इन होते हैं, माजी सर्जरी में चांगला है, पर उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट नहीं लाते। कई बार रिपोर्ट 2 साल बाद भी लीव ही नहीं होती है, पर हो सकता है वो रिपोर्ट में लिम्फ नोड पॉजिटिव, जिसमें उसको एडजुवेंट मतलब और एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की जरूरत होनी जरूरी है, ताकि वो बीमारी दोबारा ना, तो वहां मिस हो जाती है। तो दैट इज द रीजन की दे कम विद पेरीफेरी में। ये जनरली अच्छे सेंटर्स में नहीं होता है, पर जनरली पेरीफेरी में होने की संभावना होती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, दिस आर ऑल रियल एग्जांपल। जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट आते हैं, ब्रेस्ट कैंसर में कई बार कैसे मैंने देखा पेरीफेरी में, पेरीफेरी का मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में ब्रेस्ट में गांठ होती है, निकाल के उसको ऑपरेशन हो जाता है। जब पेशेंट हमारे पास 2 साल बाद आते हैं ना, तो फीवर, वेट लॉस, गले में बड़ी बड़ी गांठें, जांघों बगल में गांठ, हम समझ ही नहीं पाते कि व्हाट इज द रीजन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में दिखता है ब्रेस्ट पे चीरा था, फिर उसको पेशेंट को पूछते हैं ऑपरेशन कब हुआ था, सर 2 साल पहले था। मतलब रिपोर्ट कहाँ है? सर रिपोर्ट तो है ही नहीं। तो बोला क्यों नहीं है? सर डॉक्टर साहब ने बोला सब निकल के फेंक दिया, बोले अब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो ये जो होता है ये बहुत ही नॉर्मल सिनेरियो है ये।
0: अच्छा।
2: और इसके कारण क्या होता है कि जो हिस्टोपैथ होना चाहिए था वो हुआ नहीं, हिस्टोपैथ हुआ होगा तो पेशेंट ने रिपोर्ट नहीं लिया, पेशेंट दोबारा नहीं गया, तो उसकी कैंसर की जो ट्रीटमेंट थी वो अधूरी थी, इसलिए बीमारी दोबारा वापस आ गई है। और ये अब जो आई है वो स्टेज 4 है, अब ये क्यूरेबल नहीं है। तो आप सोचिए कि एक ह्यूमन लाइफ इज सो प्रेशियस, और ये इस छोटी सी मुझे लगता है कि जो छोटा सा जो बोल सकते हैं कि एक भ्रमितता के कारण मिस हो जाती है चीजें, तो इसलिए सावधान होना बहुत जरूरी है कि अगर कुछ भी प्रकार का टिश्यू निकलता है बॉडी में, बायोप्सी भी निकल रहा है, ट्यूमर भी निकल रहा है, गांठ भी निकल रहा है, पहला चीज तो उसको हिस्टोपैथ को भेजना जरूरी है, और दूसरी चीज उसको पूरा टिश्यू को भेजना। कई बार हमने ऐसा देखा कि एक ट्यूमर के 3 टुकड़े करते लोग, एक ये लैब में भेजते, एक वो लैब में भेजते, नहीं नहीं मैंने हे हो जाना, मैंने आपका कन्फर्म हो जाना, आता मैं सांगता तुम्हारा प्रॉब्लम का होता
0: था। प्लीज, हेलो। हाँ हेलो,
3: गुड मॉर्निंग मैडम।
0: बोलिए
2: अमरजीत जी, बोलिए।
3: नागपुर से सर, ये जो कैंसर में जो कीमोथेरेपी के मतलब जो पेशेंट होते हैं, इनको किस तरह का मतलब सर प्रिकॉशन लेना चाहिए बिफोर द ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट और आफ्टर द ट्रीटमेंट, इसके बारे में सर क्या जरा एडवाइस करेंगे लोग?
2: मैंने बोला अमरजीत जी और मिस्टर वाघ को एक बार सम्मानित करना चाहिए हमने आकाशवाणी स्टूडियो में, दे आर सो रेगुलर लिसनर, देयर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी गुड। तो कीमोथेरेपी के पहले की जो प्रिकॉशन ड्यूरिंग कीमोथेरेपी एंड पोस्ट कीमोथेरेपी, एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एपिसोड है, पर एक शॉर्ट में बता दो कि कीमोथेरेपी में आपको ये जानना जरूरी है कि कीमोथेरेपी में हम बॉडी के साथ क्या होने वाला है। अगर वो चीज़ हम समझ ले तो वी विल बी वेरी कॉशियस। जनरली कीमोथेरेपी में जब हम देते हैं तो ऑलरेडी कैंसर इसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन, इम्यूनिटी बहुत कम होती है, कीमोथेरेपी के बाद में वो कम होने की संभावना और बढ़ जाती है।
0: अच्छा।
2: सेकंड थिंग इसकी, सेकंड में कीमोथेरेपी के दौरान में कीमोथेरेपी की जो इन्फेक्शन रेट्स बढ़ने की संभावना रहती है। थर्ड थिंग इसकी, पेशेंट इज क्वाइट निग्लिजेंट अबाउट दी बॉडी, माइंड, एक्सरसाइज एंड डाइट। तो ये सब 4-5 चीज़ें अगर हम साथ में रखते हैं कीमोथेरेपी के दौरान, तो जनरली हम देखते हैं कि जो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स है वो टॉक्सिक इफेक्ट बन जाते हैं। क्या होता है ना, लोगों को साइड इफेक्ट्स ऐसा लगता है कि साइड इफेक्ट मुझे ये सह परिणाम है, ते होना त्याला घाबरायची गरज नाही, पण साइड इफेक्ट हे टॉक्सिक इफेक्ट म्हणजे दुष्परिणामध्ये नाही गेले पाहिजे, समजलं ना? दरवाजे को आपको

0: पैर लग गया ना तो दर्द होगा, वो दैट इज साइड इफेक्ट।
1: जी
0: पर वही दरवाजे पे आपको पैर लगने से नसें कट गई, ब्लीडिंग हो गया, स्टिचेस मारना पड़ रहा है, दिस इज टॉक्सिक इफेक्ट। एक ही चीज के दो डिफरेंट इम्पैक्ट है, तो
1: जी
0: ये है साइड इफेक्ट और सहपरिणाम दुष्परिणाम। तो सहपरिणाम होना तुम्हारा कि जैसे कि हेयर लॉस है किसी में होना ही चाहिए, अगर डे 15 से 20 में नहीं हो रहा है तो हमारा, जैसे मैं एम्स में था तो
1: ट्रीटमेंट
0: बॉस
1: काम
0: बॉस
1: नहीं
0: बॉस
1: करे।
0: बॉस यूज टू बी वेरी फ्यूरियस
1: जी
0: कि
1: जी
0: तुमने
1: जी
0: मुझे वायल दिखाओ, तुमने दिया क्या, तुमने म्यूकोसाइटिस अगर जिस किसी इसमें ट्रांसप्लांट में नहीं होता तो यूज टू ऑलवेज सी गिव शो मी द वायल्स, शो मी द दिस, शो मी द रिकॉर्ड्स कि तुमने लगाया कि
1: जी
0: नहीं लगाया,
1: जी
0: बिकॉज
1: ये को इफेक्ट्स है।
0: बिल्कुल को ये होना ही चाहिए उस
1: जी
0: समय में, और काउंट्स कम होना तो होना ही चाहिए। बट दुष्परिणाम का है कि भाई ऐसा नहीं हो कि भाई आपने दवा लगा दी पेशेंट को, काउंट्स कम हो गए, फीवर आ गया, उसको शॉक में चले गया, किडनी फेल हो गई, लीवर फेल हो गया, वेंटिलेटर पर चले गया, तो दिस इज टॉक्सिक इफेक्ट।
1: जी
0: तो इसके लिए हमको क्या प्रिकॉशन लेना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर कीमोथेरेपी जो मैंने मेजर गलतियाँ जो पेशेंट की देखी है ना, वो ये है कि पेशेंट पहले तो खाली पेट आ जाते हैं, बताते नहीं। एक तो बेचारे बहुत दूर से दो दो तीन तीन बसेस ट्रैवल करके, रात भर ट्रैवल करके, ऑलरेडी बहुत थके हुए होते हैं।
1: जी जी
0: और दूसरी चीज़ मैंने देखी कि जो प्री मेडिकेशंस होती है जो हम बोलते हैं उनको लेने को, जो टॉक्सिसिटीज़ को कम कर सकते हैं, कई बार वो मिस कर देते। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने जो देखी है ना, उनमें देखी कि जैसे कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, शुगर का मरीज़ है, वो गोलीच नहीं खाते उस दिन, मला वाटलं की ते घ्यायची गरज नाही, कीमोसोबत एक गरज नसते। तो कई बार ऐसा होता है कि जब पेशंट बेड पे आता है तो उसका पल्स रेट है 140, बीपी देखते हैं तो 180 110, हम समझ ही नहीं पाते व्हाट इज हैपनिंग विद दिस। फिर को पूछते तो पता, डॉक्टर साहब गोलियाँ शुरू होते हैं, मैंने कौन सी गोलियाँ, आनलेस नहीं हो तो
1: जी
0: घर ही जाए। तो ये सब चीज़ें ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ हमने देखा है कि दे आर पुअर इन हाइड्रेशन, जैसे अभी बीच में समर देखो, इस साल जैसा समर तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा कभी, जो जिस तरह से धूप थी, तो जिसके कारण हमने देखा कि द इम्पैक्ट इज सो बैड। आप सोचो आप अच्छे अट्टे कट्टे हो, आप धूप में जाते हो 5 मिनट तो आप ठंडे पड़ जाओगे।
1: जी
0: तो
1: जी
0: ये बेचारे इतने तकलीफ में
1: पेशेंट्स
0: है,
1: हैं और
0: मरीज है, ऑलरेडी इतने बीमारी से लस्त है, तो इनके पे क्या इम्पैक्ट होगा उसका।
1: जी
0: तो हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: डॉक्टर
0: जनरली वहाँ
1: मांदनिया एक कॉल
0: प्लीज।
1: लेते हैं। हेलो
2: हेलो,
1: हेलो,
2: नमस्कार। हाँ,
1: नमस्कार।
2: मैं अनिल गजगारे बोलतो, मैडम खामळ्यावरून।
1: हाँ बोला, विचारा प्रश्न अनिल जी।
2: खर्रा खाणं आणि तंबाखू खाणं आणि हे तोंडामध्ये धरून ठेवतात अर्धा अर्धा एक एक घंटा, आणि त्याच्या तोंड खुलत नाही, त्याला जेवता येत नाही, कधी छाले आले तर मग हे कॅन्सरच्या लक्षणामध्ये जाऊ शकते का?
0: बहुत अच्छा। जनरली ये जो खर्रा है ना, ये भगवान ने हमारे नागपुर को बहुत बड़ा वरदान दिया है ना, इसको नागपुरी खर्रा बोलते हैं। पर ये अभी इसका जो इन्फेक्शन है अभी पूरे विदर्भ में है, तो अब मैं तो गढ़चिरौली में जाता हूँ, डीप जंगल में भी लोग दिन भर मुंह में खर्रा लेके रहते हैं।
1: जी
0: तो
1: जी
0: मैंने देखा है कि आप अगर ना थोड़ा आज से 25 साल 30 साल पहले चल जाओ, तो आपके जब दादा दादी नाना नानी जिंदा थे ना, आप देखना वो तंबाकू घोट के खाते थे बहुत,
1: हाँ
0: जीप अंदर रखे, वो 80 80 साल तक कुछ नहीं हुआ उनको, है झाड़ के नीचे सब बैठे हैं तंबाकू खा रहे हैं, उनको कुछ नहीं हुआ। तो
1: जी
0: वाई
1: जी
0: इट इज़ कि भाई हम अभी 18 साल 19 साल 22 साल 25 साल 28 साल के लोगों में भी मुंह का कैंसर देख रहे हैं। सो इसका मेन कारण है दैट इज़ सुपारी, जो
1: अच्छा
0: दैट इज़ ए केमिकली प्रोसेस्ड, कुछ तो केमिकल से प्रोसेस्ड है। कभी आपने सुना है वो, कितना आप सुनते हैं कि मुंडे साहब अभी ये धाड़ पड़ी उधर इधर धाड़ पड़ी, अवैध सुपारी जब, तो अवैध क्या सुपारी में अवैध क्या होने लगा भाई,
1: उसमें भी
0: तो दिस
1: मिलावट।
0: इज
1: और
0: दैट।
1: जी
0: तो मुझे लगता है कि इट इज़ ए सिनर्जिस्टिक, मुझे एक और एक 11, तो मेरे को लगता है एक और 11 नहीं, एक और 11,000 ही हमारे इसमें, क्योंकि इसका जो दो बहुत ही खतरनाक चीज़ देखने मिलती है, एक तो कैंसर इज़ अ वन पार्ट, वो तो
1: जी
0: छोड़ दो, पर ये जो कैंसर है ना, दे आर वेरी बैड, क्योंकि उसमें उसका जो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट है ना पूरे मुंह में है, ऐसा नहीं कि जहाँ आपने रखा हुआ है। तो एक तरफ का कैंसर की सर्जरी हो भी गई तो दूसरी तरफ होते हैं इनमें बार बार।
1: अच्छा
0: और तीसरा चीज़ है कि कैंसर जिसको नहीं हुआ, जैसे 100 के 100 खा रहे हैं तो 100 को थोड़ी हुआ है कैंसर,
1: जी
0: पर जो
1: जी
0: 100 में के 100 को भी आपको, आप देखोगे कि ओरल म्यूकोसा का तो पूरा डैमेज हो चुका, व्हाइट हो जाता अंदर का पूरा म्यूकोसा,
1: जी
0: मिर्ची नहीं खा पाते, टेस्ट नहीं आता इनको, फिर इसके बाद मुंह नहीं खुलता इनका प्रॉपरली, और सलाइवेशन प्रॉपर हो नहीं पाता, निगलने में काफ़ी तकलीफ होती है इनमें, और लेटर स्टेजेस में दिस इज़ अ प्री कैंसर, इसको डाउट इन इसमें प्री
1: जी
0: कैंसर
1: जी
0: इसलिए भी है क्योंकि तुम्हारे जो तुमने आग थी ना वो ऑलरेडी रखी है अपने पास में, तो दिस
1: अच्छा
0: इट इज़ बर्निंग
1: किसी
0: स्टिल।
1: को वो
0: हाँ
1: जल्दी इफेक्ट हो
0: हाँ
1: जाएगा, किसी को
0: और वो
1: धीरे धीरे
0: ऑलरेडी
1: होगा।
0: ऑलरेडी वो उसके बाद में भी वो खाते रहते हैं। और
1: जी
0: कई
1: जी
0: मरीज ऐसे बोलते हैं ना कि आपने खर्रा खाते थे ना, तो ओह छोड़ लो साहब, डॉक्टर साहब कभी छोड़ लो, 2 महीने आदि पक्का समझ लेना, 2 महीने पहले उसको बहुत ज़बरदस्त सिम्टम्स मिल गए, कोई पेशेंट छोड़ता ही नहीं जब तक कि उसको बहुत बड़ी बत्ती नहीं पड़ती
1: जी
0: है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: ये जो देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये 2 3 महीने से उसको अल्सर अंदर था, वो उसको समझ जाता है कि ये मेरा बीमारी है,
1: जी
0: देन इज द रीज़न दे स्टॉप। तो ये जो खर्रा जो बोल रहे हैं ना, इसे वेरी लीथल। अगर
1: जी
0: तो अगर आप 100 में से 100 मार्क दोगे तो मैं खर्रे को दूंगा मैलिग्नेंसी के लिए, और
1: जी
0: तंबाकू को मैं 30 पे
1: जी
0: रखूंगा।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कैन केयर फाउंडेशन एंड मानधनिया कैंसर हॉस्पिटल रामदासपेट नागपुर। हेलो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन कार्यक्रम और आज का विषय है कर्क रोग, और इस विषय पर हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं तज्ञ डॉक्टर सुशील मान।

0: कहानियाँ। आप सवाल पूछ सकते हैं, कुछ प्रश्न हैं, समस्याएं हैं तो जरूर पूछिए। फोन नंबर्स इस प्रकार हैं 2529266 और 2560101। नागपुर बाहर से आप फोन कर रहे हैं तो एसटीडी कोड जरूर लगाएं। जी हाँ, 0712071712। डॉक्टर मानधनिया एक कॉल लेते हैं। हेलो।
1: हेलो। हाँ मैडम, मुझे ना सर से एक क्वेश्चन पूछना है।
0: जी, आपका नाम बताइए।
1: मेरा अर्चना फाटे। हाँ
0: जी,
1: देशमुख। हाँ सर। हेलो।
2: हाँ प्लीज बोलिए।
1: हमारी शिवजी की भक्त है वो, हम लोग मंदिर में जाते हैं। ऐसे ही वो उनका आयुर्वेद में चालू था डिस्कशन, मैंने बोला नहीं, यदि एक बॉडी के अंदर है हिस्टेक्टोमी।
2: हेलो
0: हेलो हेलो, मुझे लगता है संपर्क

0: हेलो, मुझे लगता है संपर्क नहीं हो रहा है। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे कि आजकल जो ओरल कैंसर्स होते हैं उसके बारे में, तो आजकल बहुत जल्दी ये हो रहे हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि आजकल जो मिलावट जो बढ़ गई है और इसकी वजह से जो कॉस्मेटिक्स हैं, तो कॉस्मेटिक्स की वजह से और
1: कॉस्मेटिक्स
0: या केमिकल्स जो हैं, तो इसके वजह से भी कैंसर्स बढ़ रहे हैं ऐसा कहा जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: सी डेफिनेटली केमिकल का बहुत बड़ा रोल है इसमें,
0: जी
1: और ये केमिकल ना हमारे डे टू डे में है भी।
0: जी
1: मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, आप जैसे अब आप सब्जी खाते हो, ठीक है,
0: हाँ
1: तो इसमें पेस्टिसाइड कितने लेवल का है, ये तो ट्रिमेंडस। मुझे अगर
0: जी
1: आपको एक सब्जी सब्जी पे अगर समझो 1x बोलना चाहिए, 1x तो नियरली 20x 30x पेस्टिसाइड है उसके ऊपर पे। तो ये पेस्टिसाइड किस चीज़ के लिए, इट इज़ टू कंट्रोल द पेस्ट, उनको मार जाते हैं ना,
0: जी
1: ठीक है।
0: जी
1: तो पर इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन में आप खाओगे तो क्या होगा उसको, इट इज़ गोइंग टू बी अब्जॉर्ब, वो अब्जॉर्ब हो रहे हैं, वो आपके किडनी पे इफेक्ट कर रहे हैं, आपके लीवर पे इफेक्ट कर रहे हैं, आपके डीएनए को डैमेज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे को बीमारी बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, बीमारी डेफिनेटली बढ़ रही है इससे। आप देखोगे आज कुछ 15,000 लीटर है कि 3,000 लीटर का, 40,000 लीटर दूध को
0: जी
1: अच्छी कंपनी के दूध को फेंकना पड़ा। कल सातारा में आप रोड पर देखेंगे 10,000 लीटर ट्रैक्टर्स के ट्रैक्टर दूध फेंके गए। क्यों
0: हाँ
1: फेंके गए, बिकॉज
0: जी
1: ऑफ द फियर कि भैया पकड़ में आएंगे। तो इसका
0: हाँ
1: मतलब अडल्ट्रेशन कितना स्ट्रांग है,
0: जी
1: आपको कुछ जो भी खा रहे हैं जो भी मिल रहा है सब मिलावट है, बट दैट दैट अडल्ट्रेशन इज कॉजिंग ट्रिपेंडस। आज के पेपर में आप देखेंगे एक डॉक्टर जवंदिया करके नागपुर में, और नेफ्रोलॉजिस्ट, उन्होंने एक क्रीम पकड़ी थी कि गोरे
0: डॉक्टर
1: क्रीम समथिंग,
0: जी
1: तो उसमें मर्क्यूरी का लेवल कितना था, 1200 टाइम्स,
0: हाँ
1: तो उसके कारण
0: हेलो,
1: किडनी फेलियर से। यस
0: एक कॉल है। हेलो,
2: हेलो
0: हाँ
2: मैम, गुड
0: नमस्कार,
2: मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग।
2: सर अन्ना पण गुड मॉर्निंग।
1: नमस्कार मैडम, बोला।
2: हाँ सर, मला एक प्रश्न विचारायचा था। माझे मामा जे आहे किडनी फेल डायलिसिस वर आहे दोन्ही, आणि त्यांना स्पाइन मध्ये बॅक्टेरिया झाला होता, लंबर स्पाइन मध्ये, तर ते काय कॅन्सर मध्ये कन्वर्ट होऊ शकतो का
1: नहीं
2: सर?
1: नहीं तसं काहीच नहीं,
2: त्याचं काही असं
1: नथिंग,
2: कनेक्शन आहे का?
1: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं,
2: अच्छा ठीक
1: ठीक है।
2: आहे ना सर, थँक यू।
1: तो ये जो बोल रहा हूँ, आपने बोला था ना फूड, फूड हैज़ गॉट डेफिनेटली रोल। आप देखोगे ना कि आज से 30 साल में और अभी में ऐसा क्या हुआ है कि कैंसर बढ़ रहा है, तो वन इज़ आवर डाइट,
0: जी
1: सेकंड इज़ आवर एनवायरमेंट,
0: जी
1: एनवायरमेंट टू बी ब्लेम। एनवायरमेंट सब आ गया मैडम, आपका पानी भी आ गया, आपका फूड भी आ गया, आपका बाहर का पोल्यूशन लेवल आ गया, तो ये सब चीज़ें हमारे पास कहीं ना कहीं हमारे शरीर में इसका इम्पैक्ट कर रही है। समझो आज ये 20 साल पहले से इसने इसका प्रमाण बढ़ा था, तो ये 20 साल इज इनफ फॉर द टू द रिजल्ट टू कम इन टू द मार्केट। जैसे
0: जी
1: देखा, तो
0: जी
1: अभी
0: जी
1: आ रहे हैं ना मरीज, आप
0: हाँ
1: देखो कितने बढ़ रहे हैं। पहले आपने कभी सुना था 15 साल पहले कि इतने मरीज थे, आज तो हर घर में कैंसर, किसी किसी घर में तो मैं एक एक पेशेंट, एक एक घर में तीन तीन मरीजों को ट्रीट कर रहा हूँ। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि मैं भी इससे दूर नहीं हूँ, मुझे मी एज ए डॉक्टर
0: जी
1: ऑल्सो
0: जी
1: हाउ कैन आई बी अवेयर ना। हम सब्जियाँ खा रहे, खाना खा रहे, बाहर का फूड खा रहे, पनीर देखो तो मिलावट, फूड देखो तो मिलावट, खोए अब करे क्या आदमी
0: क्या
1: इंसान, है ना,
0: वही
1: तो समझ रहे बात को,
0: यही सवाल है कि
1: ये
0: अब
1: वेरी
0: क्या कर
1: डिफिकल्ट।
0: सक
1: 140 करोड़ में ये बहुत
0: जी
1: डिफिकल्ट है। तो मुझे लगता है कि एक तो समझदारी हमको करनी, हम क्या सोचते हैं ना कि गवर्नमेंट पे डालते रहते हर चीज़ को, अरे यार तू बाहर सड़क पे 80 रुपये में पनीर टिक्का खाएगा, तो खुद का तो दिमाग लगा कि जो पनीर 500 रुपये किलो में आइडियली मिलना चाहिए, 80 रुपये में कैसे टिक्के मिल रहे थे उनको।
0: जी
1: तो
0: जी
1: डैट कलर उस पर हाथ में, उसका जो कलर लगता है ना, दूसरे दिन तक हाथ में धुल के नहीं निकलता है, तो दैट इज़ नॉट एक एडिबल कलर, वो एडिबल कलर है नहीं, वो इंडस्ट्रियल कलर है, दिस आर वेरी कार्सिनोजेनिक, भयानक कार्सिनोजेनिक है, दे आर इनफ टू हैव दिस इम्पैक्ट। तो ये चीज़ हमको
0: जी
1: समझना पड़ेगा, वी हैव टू ईट स्मार्ट, वी हैव टू बी मोर कॉशियस अबाउट आवर हेल्थ इस
0: बहुत
1: चीज़
0: सी
1: में।
0: खाने की चीजें आजकल जो प्लास्टिक में मिल रही हैं, ये भी एक कारण हो सकता
1: आप
0: है।
1: एक स्टडी देखना था, अभी
0: जी
1: आई थी बीच में, दे हैड सीन द सैंपल्स ऑफ दोज ईटिंग इन दी प्लास्टिक।
0: जा
1: अपने
0: या
1: इंडिया में एक खासियत होती है, आप
0: जी
1: देखोगे हमारे हॉस्पिटल में तो बहुत क्लासिकल क्लाब है, पेशेंट के पे लोग ना ऐसे थैली में एक कुछ तो भी लाते रहते, कहा है रे बड़ा सर चाह हाँ ली, मुझे मर जाएंगे वो चाय नहीं पियेंगे तो, पर वो पीना है उनको प्लास्टिक में,
0: जी
1: सच बता रहा मैं आपको। मुझे एक व्हाट इज दिस स्टूपिडिटी, अरे आप इतने ही तो घर से एक थर्मस ले आओ ना, उसमें लेके आओ, वो नहीं करेंगे। आपको एक गिलास में मैं आपको एसिड दूंगा पीने को, आप बोलूंगा एसिड पी ले तू, मैं तेरे को 1,00,000 रुपये दूंगा, नहीं पीगा कोई भी, क्यों, क्योंकि उसका इमीडिएट इमीडिएट आपकी डेथ है। दिस इज़ नॉट विद द प्लास्टिक, दिस इज़ नॉट विद द टोबैको, दिस इज़ नॉट विद द खर्रा। आज सालों साल खाते रहते लोग, काहे नहीं होता है, पर जब होता ना तो पूरे 10 साल निकल जाते आपके पास। तो दिस माइक्रो प्लास्टिक का एक बहुत अच्छी स्टडी है, तो उसमें देखा था कि दे हैड लैक्स एंड लैक्स ऑफ माइक्रो प्लास्टिक इन देयर बॉडी। तो जरूर थोड़ी कि कैंसर ही करें, कैंसर तो बहुत बात की चीज़ है मैडम, इसके
0: जी
1: साथ साथ
0: जी
1: में जो आपके मेंटल स्टेटस पे कितना इम्पैक्ट होता है, सिनर्जी लिथार्जी, पेशेंट हाइजी फर्टिगिबिलिटी होती है इनमें, कॉफ बढ़ जाता रहा है उनको, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, हिपाटोटॉक्सिसिटी, ये इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं लोगों में।
0: और धीरे धीरे
1: हाँ
0: जो
1: लोग
0: आपके
1: बोलते हैं ना, अभी अभी देखना आप, एक श्रोताओं को समझ में आ रहा होगा कि हर घर में एक चीज़ एक तो कॉमन होंगे, सर माझे केस खूब जाता है, हर कोई बोलेगा आपको ये माझे केस खूब

0: अरे ऐसा क्या हो गया भाई, 3 साल पहले तो किसी के नहीं केस जा रहे थे, आज तक कम जाते। कहीं ना कहीं तो हमको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं, वेयर
1: जी
0: आर वी गोइंग रॉन्ग। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको समझनी पड़ेंगी, चीप चीज़ों से दूर रहे। कॉस्मेटिक, हमारे माँ बाप ने कभी यार कौन सा क्रीम लगाया था, वो तो मलाई लगाते थे। अभी ये क्रीम जो मर्क्यूरी है तो उसमें किडनी फेलियर्स कितने
1: जी
0: एकेडमी में
1: जी
0: एक केस प्रेजेंट हुए थे, उसमें 2 किडनी फेलियर्स के पेशेंट थे और दोनों दे वर अप्लाइंग दैट क्रीम। तो हमको समझदार होना पड़ेगा कि भी कॉस्मेटिक से दूर रहो।
1: कौन सी चीज़ हमें यूज़ करनी चाहिए और नहीं, ये
0: हाँ
1: थोड़ा
0: पढ़ो, कम से
1: सोचकर
0: कम
1: हम
0: पढ़ो
1: लोग।
0: तो सर उस पर क्या
1: जी
0: लिखा
1: जी
0: है।
1: जी डॉक्टर एक कॉल लेते हैं। हेलो।
2: हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब।
0: नमस्कार,
2: हाँ मैं सहकार नगर मधुन साधु बोलते हैं।
0: प्लीज।
2: हाँ माझं म्हणणं हे होतं सर की आपण जेव्हा कॅन्सरची सेल मारण्यासाठी किमोथेरपी करणे, आणि किमोथेरपी करत असताना ज्या चांगल्या सेल सुद्धा त्याच्यात डॅमेज होतात, आणि त्या जेव्हा डॅमेज होतात त्याच्यामुळे बॉडीवरती एवढा परिणाम होतो की त्याचे केस जाणं किंवा विकनेस येणं आणि इतर गोळ्या पण चालू राहतात, तर त्याच्यात फ्रुट्स वगैरे जे आहे ज्याच्यामध्ये इम्युनिटी पॉवर वाढते
0: काय
2: आणि
0: कशात
2: त्यात
0: फ्रुट्स फ्रुट्स
2: फ्रुट्सचा जो अर्क असतो किंवा फ्रुट्स दिल्यानंतर ज्याची इम्युनिटी पॉवर वाढते, तर अशा पद्धतीने त्याची पॉवर वाढवून मग त्या ज्या सेल आहे ज्या डॅमेज होऊन राहिल्या त्यांना वाचवता येईल।
0: ठीक आहे। एक इम्युनिटी वाढवणं हा इतना अच्छा सेलिंग शब्द है कि आप कोई भी प्रोडक्ट को अगर लिख दो आप, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, कैंसर के साइड इफेक्ट्स कम करता है, पेशेंट गो ब्लाइंडली विद देम। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि ये जो जो नेचुरल चीज़ें हैं उस पर पूरा ध्यान दो, जैसे फ्रूट्स है, जूसेस है, यस दे हैव गॉट एंटी ऑक्सीडेंट इफेक्ट्स, गो फॉर दैट। बट आप ये बोलूँगा कि ये टिन टिन जूस है, कैंड जूसेस है, ये जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं बाजार में जिसमें लिखा रहता है कि टू बूस्ट योर इम्यूनिटी, तो बच के रहो इससे,
1: जी
0: ये
1: जी
0: चीज़ों
1: जी
0: से बच के रहो। और एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, मेरे पास एक मरीज आए थे जिनको ना ब्लीडिंग पीवी था पोस्ट
1: अच्छा
0: सर्जरी, 6 साल बाद हुआ उसको ब्रेस्ट कैंसर के। मैं बोला आप कुछ तो करें, वो डॉक्टर थे तो बोले, मैंने नहीं बोले कुछ नहीं करी सुशील, बोला मैडम कुछ तो कर रहे हैं, बोला बताओ, बोला क्या ले रहे क्या ले रहे क्या ले रहे, तो एक वो इम्यूनिटी बूस्टर कुछ तो ले रहे थे। व्हेन आई वेंट विद द लिटरेचर उसमें समझ में आया कि उसमें नीम का एक्सट्रैक्ट था, और
1: जी
0: पढ़ने में आया कि नीम एक्सट्रैक्ट हैज गॉस इंक्रीज इस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी, उसके कारण वो ब्लीडिंग होता है। तो
1: जी
0: हमको ये समझना पड़ेगा कि नेचुरल चीज़ों पर ध्यान दीजिए और बी सिंपल। मैलिग्नेंसी में ना जितना आप कॉमन सेंस रखोगे उतना अच्छा है। अच्छा खाना खाइए, घर का खाइए, फ्रेश खाइए, पानी अच्छे से पीजिए, नींद अच्छी चली लीजिए, और आपके दिमाग को एक्सरसाइज दीजिए, दैट इज़ प्राणायाम। आपके बॉडी को एक्सरसाइज दीजिए, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, मेडिटेट योगा है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट निगलेक्टेड चीज़ कैंसर में मैं देखता हूँ कि ना फिजिकल एक्सरसाइज के फॉर्म में मसल स्ट्रेंथनिंग नहीं होती है। तो इसलिए देखे गए ना कि पेशेंट पूरे क्योर हो जाते पर वो हील ही
1: जी
0: नहीं होते, हील नहीं होते
1: अच्छा
0: वो
1: अच्छा
0: मेंटली हील नहीं होते, वो फिजिकली हील नहीं होते, मसल पूरे लूज हो जाते, चल नहीं पाते, थकान जल जाती। तो हमारा उद्देश्य क्या है, पेशेंट ठीक नहीं होना चाहिए, पेशेंट क्योर होना चाहिए और साथ साथ में हील भी होना चाहिए,
1: नॉर्मल
0: हील
1: जीवन
0: होना चाहिए
1: उसने
0: ना।
1: जी
0: अदरवाइज हम क्या
1: जी
0: करें, उसको किताब पे पेपर पे उसको क्योर कर दे रहे पर एक सोसाइटी में जाने लायक नहीं बना पा रहे, जो कि बहुत ही उसके लिए एक निगेटिविटी है। जब तक पेशेंट को बीमारी का ट्रीटमेंट चलता है ना वो चीज़ पे ध्यान नहीं देता। पर 2 साल बाद आता ना बार बार एक ही प्रश्न था, डॉक्टर साहब मिला मला थोड़ा सा चालत, मैं थकून जाते, मला स्वस्थ वाटत नहीं, मला लुस्त लुस्त वाटते, मला कमजोरी येते, मी खाली बसली की उठता येत नाही, ये क्यों हो रहा है। बिकॉज कि जब हमने उनको बार बार हम हमारे पेशेंट्स को बोलते हैं कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ये चीज़ों पे ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, मेडिटेशन, योगा। मेडिटेशन हैज़ गॉट अ ट्रिमेंडस रोल इन
1: जी,
0: ट्रीटमेंट, ये बहुत बड़ा रोल है इसमें और
1: और
0: ये
1: आपका
0: प्रूवन है,
1: मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा हो
0: ये
1: तो
0: प्रूवन है।
1: जी
0: अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी एस्को 2012 में ये गाइडलाइंस में आ गया, 2006-07 की गाइडलाइंस में योगा आ गया था। तो हम जब तक नहीं मानते जब तक कि कोई गोरा हमको समझाता नहीं, पर हमारे पास तो हजारों सालों से ये है विद्या है, तो व्हाई वी शुड नॉट टेक दैट एडवांटेज,
1: जी
0: वी आर द
1: जी
0: गुरुज फॉर दिस।
1: जी
0: तो हम जब तक
1: और
0: ये सब
1: किसी
0: चीज़
1: हीलिंग
0: को,
1: के लिए
0: हाँ
1: हमारा
0: होलिस्टिक अप्रोच इन कैंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
1: जी
0: ये
1: जी
0: दवाइयाँ डॉक्टर ये यूज़लेस है जब तक कि आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी
1: इच्छा
0: नहीं है।
1: शक्ति
0: हाँ
1: स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर बहुत ही व्यापक ये विषय हैं और बहुत से कॉल्स भी हैं, लेकिन हमें अभी रुकना चाहिए क्योंकि हमारा समय भी समाप्त हो रहा है। तो आप आए और बहुत अच्छा मार्गदर्शन आज हमारे श्रोताओं को मिला है। आकाशवाणी की तरफ से आपके बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू।
1: श्रोताओं आप सुन रहे थे कैन केयर फाउंडेशन एंड मानधनिया कैंसर हॉस्पिटल रामदास पेट नागपुर। हेलो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन कार्यक्रम और आज का विषय था कर्क रोग, और इस विषय पर हमें मार्गदर्शन किया तज्ञ डॉक्टर सुशील मानधनिया ने। और इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहायक थे सुभाष शास्त्रकार और मनोज महा

0: भजन तथा निर्मिति सहायक थे अतुल साखरकर और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी संगीता अरजपुरे। कार्यक्रम के प्रायोजक कैनकेयर फाउंडेशन एंड मानधनिया कैंसर हॉस्पिटल नागपुर। तो मिलते हैं अगले अनुभाग में, तब तक मैं पूर्वा कुलकर्णी डॉक्टर सुशील मानधनिया के साथ आपसे इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: श्रोते हूँ। हेलो डॉक्टर, हा लाइव फोन इन कार्यक्रम आताच आपण आकाशवाणी आणि विविध भारती या दोन्ही केंद्रांवरून ऐकलात।
2: मध्यम लहरी 512.8 दशांश मीटर म्हणजेच 585 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे। ऐकवित आहोत मराठी चित्रपट संगीत।

0: आपण ऐकतात आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरचं प्रसारण. 11:30 आणि 12 सेकंद झालेली आहेत. श्रोतेहो, आता विभावरी मासिक साहित्य पत्रिका हा कार्यक्रम ऐकवित आहोत. आज या कार्यक्रमात आपण ऐकणार आहात आसू के रंग ही माधुरी मिश्रा लिखित कथा, तसंच आदिला हादीवाला यांचा काव्यपाठ आपण ऐकणार आहात. तर ऐकूया कार्यक्रम विभावरी.
1: हिंदी साहित्य पत्रिका विभावरी सुन रहे सभी श्रोताओं को आदेश जैन का प्यार भरा नमस्कार. विभावरी में हम चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य जगत की और बात करते हैं सामाजिक विषयों पर. साथ ही हम आपसे रूबरू करवाते हैं उन साहित्यकारों को जो साहित्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं. आइए सबसे पहले सुनते हैं एक सुविचार. स्वामी विवेकानंद ने कहा था, लोग कहते हैं इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो, मैं कहता हूं खुद पर विश्वास करो. सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही है. श्रोताओं, साहित्य की विभिन्न विधाओं में से एक है कहानी. तो आइए कथा सागर में सुनते हैं कहानी, जिसे सुना रही हैं माधुरी मिश्रा.
2: नमस्कार, मैं माधुरी मिश्रा नागपुर से. प्रस्तुत है मेरी कहानी आंसू के रंग. ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी बीना देवी कभी दरवाजे के ऊपर जलती लाल बत्ती को देखती तो कभी ओटी के बंद दरवाजे को अपलक निहारती. आती जाती नर्स उन्हें बार बार बेंच पर बैठने को कहती, किंतु हल्की गुलाबी रंग की साड़ी में शालीनता की चादर ओढ़े कुछ बुदबुदाते लबों से मानो वह तो खड़े खड़े ही 33 करोड़ देवी देवताओं को मनाने के लिए तपस्या कर रही थी. लगभग 8 घंटों से लगातार जल रही लाल बत्ती आखिर बंद हुई और ओटी का दरवाजा खोलते हुए डॉक्टर अवस्थी संग उनके कुछ साथी बाहर निकले. डॉक्टर के चेहरे के हाव भाव ने बीना देवी के अधरों तक आए प्रश्न को वहीं रोक दिया. वह तो अवाक सी खड़ी बस यही सुनना चाहती थी कि ऑपरेशन सफल रहा, मिस्टर सिंह अब खतरे से बाहर है. किंतु ऐसा नहीं हुआ. आई एम सॉरी, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की पर, डॉक्टर अवस्थी कहे जा रहे थे पर बीना देवी के कान सुन्न हो चुके थे. धड़ाम सी आवाज संग जमीन पर बैठते हुए बीना देवी वहीं जम सी गई. उसकी पथराई आंखों से बहते आंसू उसके जीवित होने की गवाही दे रहे थे. सभी औपचारिकताएं पूरी करके सुबह तक आपको बॉडी दे दी जाएगी, इन शब्दों ने उसमें फिर से कुछ चेतना भर दी. अपने अर्ध चेते मस्तिष्क से उसने अपने मन को मानो कुछ संकेत दिए. हाथ से छूटकर गिरा फोन टटोलकर जैसे तैसे उसने अपने जेठ को सूचित किया, फिर नर्स की सहायता से उठकर बेंच पर बैठ गई. उसने अब तक बेटे को कुछ नहीं बताया था. बताए या नहीं, बताए तो कैसे. इसी उधेड़बुन में लगभग 10 मिनटों तक वह फोन में बेटे का नाम खोजकर रुकी रही. फिर कुछ निर्णय कर उसने कॉल लगा दिया. बेटा श्रवण, आज सुबह दफ्तर जाते समय तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, हमने उन्हें खो दिया. उसके शब्दों में न जाने कहां से सहजता आ गई. बेटे को नहीं रोने की हिदायत देते हुए वह आगे बोली, बेटा तुम्हारे पिताजी नहीं रहे किंतु तुम्हारे लिए उन्होंने जो भी सपने देखे थे वो अभी भी अपूर्ण हैं। वे चाहते थे कि तुम विदेश में अपनी इंजीनियरिंग पूरी करो, तो अब तुम्हें और अधिक परिश्रम से पढ़ाई करनी होगी. दोनों बड़े पिताजी कल तक पहुंच जाएंगे, तुम वही रहो क्योंकि उनके सपनों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी अब मैं तुम्हें सौंपती हूँ, कहकर फोन रखती हुई बीना देवी के कंठ मानो पुनः सूख गए. रात भर वह अस्पताल के उसी बेंच पर बैठी रही. उसकी खुली आंखों से अतीत का हर दृश्य किसी स्वप्न की तरह गुजर रहा था. 21 वर्ष पहले सोमवार का वह सुदिन जब एक गोरा चिट्टा नौजवान उनके घर उसे देखने आया था. हस्त पुष्ट बांका नौजवान जिसे देखते ही कोई भी युवती उसे अपना साथी बनाने को मचल उठती. चाय का कप पकड़ाते हुए जब बीना की मासूम नजरें उसकी नजरों से टकराई तो मानो शालीन आंखों में एक अनोखी रोशनी कौंध गई थी. वही अपने सावले

काले रंग की ओर ध्यान जाते ही उसने अपनी नजरें झुका ली, मानो उसके मन ने कहा हो, इसे तो तुझसे कई गुना सुंदर लड़की मिल जाएगी, फिर यह तुम्हें भला क्यों पसंद करेगा। यह सोचते ही वह स्वप्नलोक की दहलीज से वापस लौट आई। बचपन से ही उसके उलझे और शांत मन में पहली बार उसने एक अनोखी हलचल को महसूस किया था। शायद ऐसा ही कुछ माता जानकी ने महसूस किया होगा जब उन्होंने पुरुषोत्तम राम की पहली झलक देखी होगी। अपने भीतर एक कश्मकश समेटती वह अपने कमरे में लौटी थी। वह जानती थी कि लड़के वाले घर जाने के बाद ही अपना जवाब बताएंगे। बताएंगे क्या? पूरी संभावना है कि मना ही करेंगे। यह ख्याल आते ही वह उठकर आईने के आगे खड़ी हो गई। गहरी आंखें, तीखे नाक नक्श, चौड़ा माथा, सब तो ठीक ही है, किंतु आराध्य श्री कृष्ण के आशीष स्वरूप प्राप्त अपने सांवले रंग पर ध्यान जाते ही वह ठिठक गई। भला शहर में नौकरी करने वाला एक पढ़ा लिखा और मोहक नौजवान गांव की 12वीं पढ़ी एक सांवली सी लड़की को कैसे अपने जीवन साथी के रूप में चुनेगा। इस एक सवाल ने उसके मन में उठती सभी तरंगों को रोक दिया। कुछ ही देर पश्चात घर में हर्ष की एक लहर उठी और हलचल बढ़ती सी प्रतीत हुई। वह बाहर निकलती इससे पूर्व ही सीमा उसकी चचेरी बहन दौड़ती हुई कमरे के भीतर आई और बोली, दीदी दीदी आपको बाहर बुला रहे हैं, कुछ रसम करनी है। इससे पहले कि वह कुछ सोचती या पूछती, पीछे से उसकी चाची भी पहुंच गई और बोली, अच्छा जी तो अब मुस्कुरा भी दो, आखिर अब आप अपने अंग्रेज सिंह की अंग्रजाइन जो बनने वाली हैं। बीना का हृदय मानो अपने मन में राम रूपी अंग्रेज सिंह की छवि पाकर खुशी से झूम उठा। वह सोचने लगी कि अंग्रेज सिंह, यह नाम क्यों रखा गया होगा उनका, शायद अंग्रेजों की तरह गोरे चिट्टे या यूं कहे कि महागोरे होने की वजह से परिवार वालों ने यह नाम रख दिया होगा, तब तो ऐसे ही नाम रख दिए जाते थे। दादी ने भी तो उसकी मधुर आवाज सुनकर उसका नाम वीणा रखा था, फिर क्षेत्रीय प्रभाव के कारण उसका नाम वीणा से बदलकर कब बीना हो गया किसी को पता ही नहीं चला। यह सोचकर वह मुस्कुरा उठी। बैठक से पुनः बुलावा आया। बीना नजरें झुकाए शर्माती हुई चाची के साथ बैठक की ओर चल दी। कुछ उपहार और आशीर्वाद के स्वरूप में प्राप्त शगुन के रुपयों के आदान प्रदान संग बीना एवं अंग्रेज सिंह के विवाह को सुनिश्चित किया गया। पहली नजर की सुखद अनुभूतियों और हृदय में उठती प्रेम की तरंगों संग किसी तरह 2 माह बीत गए। विवाह के बंधन में बंधकर 7 जन्मों के वचन लिए बीना ठाकुर पूर्ण रूप से श्रीमती बीना अंग्रेज सिंह बनकर अपने ससुराल पहुंची। सास ससुर, 2-2 जेठ जेठानियों के साथ उनके 2-2 बेटे और बेटियों वाले उस संयुक्त परिवार में बीना पूरी तरह से रम गई। कुछ ने तो उसे पूरी तरह से प्रेम के साथ स्वीकारा, जबकि कुछ की नजरों ने उसके सांवले रंग को लेकर अंग्रेज सिंह की पसंद पर हैरानी भी व्यक्त की। जल्द ही अपने गुणों से उसने सभी के मन में अपनी जगह बना ली। अपने काम के साथ साथ दूसरों के हिस्से के भी काम खुशी खुशी करने वाली बीना रिश्तों में मिठास बनाए रखती। 1 वर्ष ससुराल में रहने के बाद बीना के जीवन में नवांकुर की आहट हुई। बेहतर देखभाल और उसके मधुर साथ की कामना संग अंग्रेज सिंह उसे शहर ले आया। परिवार से दूर जाकर एक तरफ बीना के मन के एक कोने में उदासी भर गई, किंतु दूसरी तरफ अंग्रेज सिंह के साथ और उसके प्रेम ने उसके गृहस्थी को सजाने सवारने के लिए प्रेरणा दी। निजी कंपनी में कार्यरत जूनियर इंजीनियर अंग्रेज सिंह ने गांव में भी अपने परिवार के लिए पक्का मकान बनवाया था और शहर में भी एक जमीन ले रखी थी। धीरे धीरे जमा किए गए पैसों से उसने बीना और अपनी होने वाली संतान के लिए 3 बेडरूम, हॉल, किचन वाला एक छोटा सा बंगला बनवाया। साथ ही बाहर की तरफ एक कमरा चौकीदार के परिवार के लिए भी बनवाया, ताकि जब भी वह काम के सिलसिले में बाहर जाए तो उसका परिवार सुरक्षित महसूस करे। सौभाग्यवती बीना ने कुछ माह पश्चात एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। बड़े जतन से दोनों ने मिलकर उसका नाम श्रवण रखा। नाम के अनुरूप श्रवण भी श्रवण पुत्र बनकर अपने अभिभावकों का मान बढ़ाता रहा। एक दिन अंग्रेज सिंह ने बीना से कहा, बीना हमारी गृहस्थी यहाँ ठीक ही है, मैं सोचता हूँ कि अपना गांव वाला हिस्सा दोनों भाइयों के लिए छोड़ दूं और गांव की खेती बाड़ी घर द्वार उन्हें ही सौंप दूं, तुम इस बारे में क्या सोचती हो। यह सुनकर बीना ने अपना हाथ उनके हाथों में रख दिया और मुस्कुराकर बोली, मेरी संपत्ति तो आप और श्रवण ही है,

मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनते ही अंग्रेज सिंह के चेहरे पर अपने पत्नी के लिए गर्व के भाव उभर आए। श्रवण को विदेश में इंजीनियरिंग में दाखिला मिल गया था। पिछले 2 वर्षों से वहां अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए उसने भी अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दिया था। सब कुछ इतना अच्छा था कि बीना देवी ने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक दिन उसकी पूरी दुनिया उसके सामने बिखर जाएगी। आंखों से अविरत बहने वाले आंसुओं की कुछ बूंदे उसके अधरों को स्पर्श करते हुए खारे हो चुके स्वाद की अनुभूति करा रहे थे। तभी एकाएक एम्बुलेंस रुकी और ड्राइवर ने पीछे मुड़कर कहा, मैडम आपका घर आ गया। 21 वर्षों के सुनहरे जीवन चक्र से निकलकर इस अंधकार युक्त वर्तमान की सच्चाई उसे डराने लगी। हिम्मत करके वह नीचे उतरी। आसपास के कुछ लोगों ने आकर मदद करते हुए बॉडी को गाड़ी से उतार कर बरामदे में रखा। कुछ ही देर में रोते हुए दोनों बड़े भाई भी अपने अनुज के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। धीरे धीरे दाह संस्कार की सभी रस्में पूर्ण की गई। अन्य क्रियाकर्म तथा भोज के लिए धन की आवश्यकता बताते हुए सबसे बड़े जेठ जी ने बीना से पैसों के बारे में बात की। बीना मानो एक सपने से निकली थी। दुर्घटना के बाद जब ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों ने उसे 10 लाख रुपए अस्पताल में जमा करने के लिए कहा था, तब उतना कैश न होने के कारण उसने अपने सारे जेवर आनन फानन में बेच दिए थे। उन्हीं में से एक अच्छी खासी रकम उसके पास बची थी। उसने पैसों का बैग जेठ के सामने रख दिया। दोनों ने जब पैसे गिने तो उनके चेहरे पर एक संतुष्टि उभर आई। गंभीरता ओढ़े हुए बोले, यह तो कम है, पर चिंता मत करो, बाकी हम देख लेंगे। चेहरे पर उभरती कुछ लकीरों को सामान्य बनाते हुए दोनों भाई बाजार की तरफ चले गए। 13वीं तक के सभी कार्य संपन्न हुए। सभी कार्यों में पानी की तरह पैसा बहाया गया। आखिर में ससुराल वाले अपनी गृहस्थी में लौट गए। बीना देवी अपने घर में अकेली पड़ गई। एक ही जगह पर बैठे बैठे कब सुबह और कब शाम हो जाती उसे पता भी नहीं चलता। एक दिन श्रवण ने माँ से हिचकिचाते हुए अपने कॉलेज की अधूरी फीस की बात की, तब उसकी जिम्मेदारियों ने शोक में डूबे उसके मन मस्तिष्क को कुछ चेतना लौटाई। पैसे तो बचे थे नहीं, जेवर भी बिक गए थे, किंतु गले का मंगलसूत्र और कान की बालियों ने उसे अपने पति के स्वप्न को पूर्ण करने की हिम्मत दी। कई टुकड़ों में बिखरते अपने मन को समेटती वह पुनः सुनार की दुकान पर पहुंच गई। पैसे बेटे को भेजकर उसने अपना घर किराए पर चढ़ाने का निर्णय किया और स्वयं बाहर की ओर बनाए गए सर्वेंट रूम में रहने लगी। किराए से मिलने वाले पैसों से वह अपने जीवन और पिता पुत्र के सपनों को संभालने लगी। पति की मृत्यु के बाद ससुराल वालों ने उससे दूरियां बना ली थी। उन्हें फिक्र थी कि कहीं वह अपना हिस्सा या पैसा न मांग बैठे, किंतु उसके लिए उसके स्वर्गीय पति की हर ख्वाहिश संपत्ति से कहीं ऊपर थी। 2 साल की उसकी तपस्या के साथ श्रवण की पढ़ाई पूरी हुई। उसने बताया कि उसे वहीं नौकरी मिल गई है और अगले 2 साल के लिए उसे वहीं रहकर काम करने का एक एग्रीमेंट साइन किया है। वह केवल कुछ दिनों के लिए अपनी माँ से मिलने भारत आएगा। माँ के हृदय में फिर हलचल हुई, किंतु अपने मन को संभालती वीना देवी ने अपने बेटे को आशीर्वाद देते हुए कहा, ठीक है बेटा, और ऐसा कहकर उसने फोन रख दिया। कुछ दिनों बाद जब श्रवण वापस आया तब उसे अपनी माँ की आर्थिक स्थिति का ज्ञान हुआ। उसने माँ से कहा, माँ मेरे साथ विदेश चलो, अब यहाँ हमारा कुछ नहीं है। मैं वहां एक लड़की को पसंद करता हूँ, उसका नाम आना है। वह भारत में नहीं रह पाएगी और मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। अब हम तीनों वहीं खुशी खुशी रहेंगे। अरे बेटा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी और तुम्हारे स्वर्गीय पिता की खुशी है। तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं यहाँ ठीक हूँ। न चाहते हुए भी किराएदार को विदा कर श्रवण ने माँ को वह घर लौटाया और बोला, यह मकान नहीं, हमारा घर है माँ, तुम यहीं रहो, मैं प्रति माह तुम्हें पैसे भेजता रहूंगा। बीना ने बिना कुछ बोले बस हाँ में सिर हिला दिया। घर काज पेड़ पौधों के साथ समय बिताने में व्यस्त बीना आंगन में आने वाले पंछियों की चहचहाहट में खोई रहती। श्रवण का फोन आता तो बेटे बहू से बात कर लेती। वे प्रति माह बिना भूले समय से पैसे भेज देते। जैसे तैसे समय कटने लगा। 2 वर्ष पश्चात एक शाम बीना देवी हाथ में दीपक लेकर तुलसी की ओर बढ़ रही थी कि गेट पर श्रवण को देख हर्ष और खुशी से वह ठिठक गई। विस्मृत सी बीना देवी दीपक के साथ आगे बढ़ गई। तभी श्रवण के पीछे से लाल साड़ी पहने एक सुंदर सी युवती निकली। आना, तुम आना हो ना, अनायास ही उनके मुख से निकल पड़ा। हाँ मैं

0: को हिलाते हुए आना ने आगे बढ़कर माँ के पैर छू लिए। बेटे और बहू को आशीर्वाद देती हुई बीना ने झटपट तुलसी माँ की पूजा की और उसी आरती के थाली से अपनी बहू का स्वागत कर उन्हें भीतर ले आई। बीना देवी को यकीन ही नहीं हो रहा था, उसे तो मानो यह सब एक सपने जैसा लग रहा था। अचानक कैसे आना हुआ? अभी भारत में कब तक हो? क्या ऑफिस के काम से आए हो? न जाने कितने ही प्रश्न वह एक ही सांस में पूछ गई। दोनों कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, माँ आप दादी बनने वाली है, हमें अपने पूरे परिवार के साथ रहना है, इसलिए हम यहाँ आ गए हमेशा के लिए, आपके पास, अपने घर। एक हल्की सी खामोशी लिए छह आंखें एक साथ अश्रु की भाषा में बोलने लगे। बीना देवी ने ऊपर की ओर देखकर मानो अपने पति अंग्रेज सिंह को इस खुशी की सूचना दी। फिर वह उठकर अपने बहू को गले से लगाकर बोली, आओ बेटी, मैं तुम्हें और अपने पोता या पोती को, जो भी हो, दोनों को तुम्हारा अपना घर दिखाती हूँ। बीना देवी दोनों हाथों में अपने बेटे और बहू का हाथ थामकर घर के हर कोने में बसी उनकी यादों से और श्रवण के बचपन से मिलवाने लगी। इस बार उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे।
1: आंसू के रंग। जी हाँ, अभी आप सुन रहे थे ये कहानी, जिसे सुना रही थी माधुरी मिश्रा। साहित्य की एक और विधा है कविता। तो आइए काव्य पाठ के अंतर्गत सुनते हैं डॉक्टर आदिला खादीवाला से उनकी स्वरचित कविताएं।
2: नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आदिला खादीवाला सोज, अपनी स्वरचित रचनाएं आपके सामने पेश कर रही हूं। मेरी पहली रचना का नाम है अंधी लड़की। नहीं देखा मैंने चांद सितारों को कभी, नहीं देखा इंद्रधनुष के रंगों को कभी। कैसा होता है मेले का समा मालूम नहीं, मैं कुदरत के हसीन नजारों में खोई नहीं कभी। मैं संवरती तो रोज हूं, मगर खुद को आईने में देखा नहीं कभी। मुझे अफसोस होता था अपनी नाबीना आंखों पर और रश्क बिनाई वालों पर। आज जब मैं नींद से जागी, मुझे एहसास हुआ अचानक, क्यों चाहती हूं मैं ये आंखें और बिनाई। मैं सोचती रही सोचती रही सोचती रही, फिर जख्मी दिल ने कहा, अच्छा हुआ तुम चश्मे बीना से महरूम हो, चुभते हुए नजारों से दूर हो, वरना तुम्हें भी देखना पड़ता जमाने के मक्कार और फरेबी चेहरे, नौजवानों का बहता हुआ खून, बेवाओं की सूनी मांग, बेटियों का शोषण और बच्चों के आंसू भरे चेहरे, बहनों की सिसकियां, बूढ़े माँ बाप की खोई हुई लाठी, बोझ ढोते कंधे और कांपती उंगलियां, और देखना पड़ता आतंक हिंसा की फैलती खौफनाक अमर बेल और फिरका परस्तों के खूनी खेल। सोचती हूँ अच्छा ही हुआ जो मैं चश्मे बीना से महरूम रही, खूनी नजारों से दूर रही, क्योंकि मैं वक्त की गर्दिश और उसमें फंसते लोगों को देख नहीं पाती, क्योंकि मैं वक्त की गर्दिश और उसमें फंसते लोगों को देख नहीं पाती, इंसानियत को मजहब की लड़ाई में दम तोड़ते देख नहीं पाती, इंसानियत को मजहब की लड़ाई में दम तोड़ते देख नहीं पाती। अच्छा ही हुआ जो मैं चश्मे बीना से महरूम रही, जो मैं चश्मे बीना से महरूम रही। मेरी दूसरी रचना का नाम है नाम। गर्भ में रहते हुए ही बच्चों के सोच लिए जाते हैं नाम। गर्भ में रहते हुए ही बच्चों के सोच लिए जाते हैं नाम। बाहर की दुनिया में आते ही रख दिए जाते हैं नाम। खुशी से हो के पागल दादा दादी नाना नानी भी रख देते हैं अच्छा सा सुंदर प्यारा सा कोई नाम। कुछ इतिहास

आस के पन्नों से चुरा कर, कुछ देवी देवताओं के आशीर्वाद पाकर, कुछ पुराने तो कुछ आधुनिक रख दिए जाते हैं नाम। कल्लू लल्लू गुल्लू, लालू कालू मालू, चंपा चमेली बेला गेंदा, उतर गए हैं सबकी नजरों से पुराने ये नाम। इनकी जगह आ गए हैं अब अंग्रेजी के नए नाम। बबलू डब्लू मोंटू, डिम्पी रिंकी पिंकी, पम्मी जम्मी रॉकी, जी हाँ, इंसानों और कुत्तों के लगने लगे हैं एक जैसे ही नाम। इंसानों और कुत्तों के लगने लगे हैं एक जैसे ही नाम। इन सब के अलावा एक नाम और आता है, इन सब के अलावा एक नाम और आता है, संस्कारों से जिसका गहरा नाता है, जहां वंश का नाम चलाने को एक ही बेटा काफी माना जाता है, जहां वंश का नाम चलाने को एक ही बेटा काफी माना जाता है, चाहे हो वो वकील, डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर, चाहे जुवारी, शराबी, मदारी या स्मगलर, नाम तो आखिर नाम ही होता है जो अपनी अलग पहचान देता है और पीढ़ियों तक चल जाता है। इन बेटों से वंश का ऊंचा नाम, इन बेटों से वंश का ऊंचा नाम। मगर दोस्तों, इन सब नामों से हटकर होते हैं और भी कई नाम। जी हाँ, कुछ नाम इज्जत और सम्मान पाते हैं, कुछ नाम नफरत के काबिल रह जाते हैं, कुछ नाम गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। नाम जो चलता है जीवन से मृत्यु तक, नाम जो चलता है मृत्यु से सदियों तक, किताबों में पढ़ने के लिए, कहानियों में सुनने के लिए, हो जाता है जब सब कुछ खत्म, बस रह जाता है सबकी जुबां पे एक नाम, सबकी जुबां पे एक नाम। मेरी अगली कविता का शीर्षक है, गांव ढूंढते रह जाओगे। आजकल आपको मालूम है कि लोग गांव से शहर की तरफ आ रहे हैं। गांव ढूंढते रह जाएंगे, अच्छे लगते हैं हमें गांव के कच्चे मकान, लहलहाती फसलें और खेत खलिहान, आड़ी तिरछी लंबी सकरी पगडंडियां, लहराती बलखाती शोक चंचल नदियां, ढलते सूरज की लाली, ढलते सूरज की लाली, चारों तरफ छाई हरियाली, चरवाहों की मधुर बंसी, जानवरों के गलों की घंटी, पनघट से पानी लाती गोरियां, पेड़ों से लदी आम की कैरियां, बैलगाड़ी की उबड़ खाबड़ सवारी, खुद से लजाई शर्माई कंवारी, गोबर से उपले थापती, घास फूस पर रोटी पकाती, कितनी भली लगती है बूढ़ी दादी, बड़ा सा घूंघट काढ़े काम करती भाभी, सीधी सादी गांव की ग्वालन, हौजी हौजी करता नौकर गंगा धरन, अच्छी लगती है स्वच्छ निर्मल ठंडी हवा, खारे मीठे पानी का कुआं, गांव की चौपाल के आले, गरम गरम चाय के प्याले, गांव की चौपाल के आले, गरम गरम चाय के प्याले, मिट्टी की सोंधी खुशबू, बहु बेटियों की इज्जत आबरू, मिट्टी की सोंधी खुशबू, बहु बेटियों की इज्जत आबरू, मिट्टी की हांडी में बना खाना, सुबह नदी पे कपड़े धोने जाना, ये सब अच्छे लगते हैं हमें, फिर भी हम लौट आते हैं शहर की ओर, फिर भी हम लौट आते हैं शहर की ओर। अगली पंक्तियां हैं, यहाँ आकर हम भूल जाते हैं गांव की चौपाल, गरीबी की सूरत पर उभरे अनगिनत सवाल, भूल जाते हैं गांव का बचपन, प्यारा सा बचपन, माँ की लोरियां, दादी की कहानियां, सब कुछ भूल जाते हैं और लौट आते हैं

0: शहर की ओर और लौट आते हैं शहर की ओर, क्योंकि शहर की चकाचौंध बांध देती है मजबूरी के घुंघरू हमारे पाँव में, और हम नाचने लगते हैं तमन्नाओं की छाँव में, और हम नाचने लगते हैं तमन्नाओं की छाँव में। यही हाल रहा हमारे शहर आने का, तो देख लेना एक दिन धीरे धीरे सभी गांव शहर बन जाएंगे, और हमारे बच्चे इतिहास की किताबों में गांव ढूंढते रह जाएंगे, गांव ढूंढते रह जाएंगे। अगली रचना है तुम्हारी याद। आपको बता दूं जुलाई का महीना है, आज ही इस महीने में मेरी बेटी का जन्मदिन होता है, उसी पर मैंने ये कविता लिखी है। तुम हर पल हर वक्त मेरे साथ रहती हो, तुम हर पल हर वक्त मेरे साथ रहती हो, मेरे सीने से चिमटी हुई तुम्हारी यादें मेरा दर्द बनकर आंखों से झरने लगती है। सागर की अतः गहराई में हलचल देखकर मेरा मन तड़प उठता है, और आंखें सच्चाई के कड़वे कसैले घूंट पी लेती हैं। मैं तुम्हें खोजने लगती हूँ अनायासी हवाओं में, खलाओं में, सितारों में, या फिर मिट्टी के खिलौनों में। तुम कहीं नज़र नहीं आती हो मुझे, मगर तुम्हारे नाजुक नाजुक हाथों का लम्स सहलाने लगता है मुझे, और मेरे आंसुओं की सूखी लकीरों को अपनी कोमल उंगलियों से पोंछती हुई तुम धीरे से मेरे कानों में सरगोशी करती हुई तुम्हारी आवाज़ मेरे दर्द पर अपनी उल्फत का फाया रख कर कहती है, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ हर पल हर वक्त बनकर तुम्हारी याद। अगली कविता है नशा। नशा शोहरत का, नशा शबाब का, नशा शराब का, नशा शोहरत का, नशा शबाब का, नशा शराब का, नशा चाहे कोई भी हो जब बढ़ता है तो सर चढ़ के बोलता है, दिन में भी आसमां के तारे ढूंढता है, मगर कुछ क्षणों बाद जब नशा उतरने लगता है तब आदमी समय की डोर से कटकर कटी पतंग की तरह ज़मीन पर गिर जाता है, और अगले ही पल उसका नशा काफूर हो जाता है। शोहरत वाला गुमनाम, शबाब वाला बदनाम, और शराब के नशे वाले का हो जाता है किस्सा तमाम, और शराब के नशे वाले का हो जाता है किस्सा तमाम। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आदिला खादीवाला से उनकी स्वरचित रचनाएं। मुझे उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम अवश्य पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे सुरेंद्र पाटिल। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो आज्ञा दीजिए आपके अपने रेडियो दोस्त आदेश जैन को। नमस्कार।
2: विभावरी मासिक साहित्य पत्रिका आपण ऐकत होतात। आज या कार्यक्रमात आपण ऐकलीत आसू के रंग, माधुरी मिश्रा लिखित कथा, तसंच आदिला खादीवाला यांचा काव्यपाठ। हा कार्यक्रम आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून प्रसारित करण्यात आला।

0: मध्यम लहरी 512.8 दशांश मीटर्स म्हणजेच 585 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे. प्रसारित करीत आहोत NCERT द्वारे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग.
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूं विमलेश.
2: और मैं हूं अजीत. नमस्कार और जय जोहार. आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने. लिखते हैं,
1: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है. जिस प्रकार प्रकृति सबसे प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम हमें प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए.
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए. और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश. तो पहला संदेश हमें मिला है NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी.

0: का राजा जी नगर बेंगलोर से लिखा है, लिखते हैं,
1: सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता।
0: आप आगे लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आज उमंग कार्यक्रम सुना, सिलिका पर आपका विषय उत्कृष्ट था, प्रस्तुति का तरीका वाकई सराहनीय है, चरण दर चरण समझाने का तरीका, सिलिका क्या है या सिलिकॉन से कैसे भिन्न है और इसका सामान्यतः उपयोग कहाँ होता है, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग वाकई अद्भुत है। विषय और प्रस्तुति दोनों ही शानदार थे।
1: सिलिकॉन घाटी में रहते हुए भी मुझे सिलिका और सिलिकॉन के सरल अंतर का पता नहीं था। इस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद।
0: आगे आप लिखते हैं, सबसे बढ़कर हमेशा की तरह आप दोनों की प्रभावशाली आवाज हर किसी के मन में तुरंत उतर जाती है, यही आपकी प्रस्तुति का असली प्रभाव है।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनआर प्रसाद जी और अखिला जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास शिव कुमारी रामदुलारी जी का।
1: जी इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं,
0: उमंग कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद, प्रेरणाप्रद और ज्ञानवर्धक होता है। हम तो नियमित श्रोता हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी लाजवाब होती है। हमारे यहाँ बच्चों का सुझाव है कि
1: भारत की नदियों, ऊंची चोटियों और नए नए आविष्कार और वैज्ञानिकों पर जानकारी सुनाएं तो बहुत इनायत होगी। आपकी पूरी उमंग कार्यक्रम टीम परिवार को उत्कृष्ट लगन और मेहनत के लिए हम सल्यूट करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने जी का।
1: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी
0: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
1: धन्यवाद आप सबका भाग लेने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
0: तो श्रोताओं हमारा पहला प्रश्न था कि मातृवृक्ष किसे कहते हैं और क्यों।
1: श्रोताओं इसका जवाब जान लेते हैं। मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहते हैं जो जंगल में बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें धरती पर दूर दूर तक फैली होती हैं और वे अपनी जड़ों द्वारा अन्य छोटे पेड़ पौधों को पोषण पहुंचाते हैं।
0: जी और हमारा दूसरा प्रश्न था पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता है। कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियां झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर निर्भर करती है। कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है। साथ ही साथ कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
0: जी हमारा अगला प्रश्न था क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
1: जी इसका जवाब भी जान लेते हैं। बहुत से पेड़ हो सकते हैं ऐसे, लेकिन क्लोनल पेड़ का सबसे सरल उदाहरण है बरगद और नॉन क्लोनल पेड़ का उदाहरण है आम का पेड़।
0: जी अशोता हमारा अंतिम प्रश्न था, हमने आपसे पूछा था जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो उदाहरण दीजिए।
1: जब हम किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उसी समय हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है और हमारे लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा होता है।
0: जी तो श्रोताओं ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है कंगारू के कितने पैर होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कंगारू के कितने पैर होते हैं।
0: 8800440559 पर जो हमारा IBRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर आप हमारे संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो करना ना भूलें।
1: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है सरितपुर की कहानी।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बाढ़ आने के विभिन्न कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी अहम जिम्मेदारी है।
2: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे फसल बर्बाद,
3: सारी फसल बह गई।

0: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों, बहुत समय पहले की ये बात है। हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी माँ की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता। वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी। नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई, और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
1: लो भाई, पहुंच गए सरितपुर। वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई, मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
2: हाँ, सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत।
1: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। कितना साफ पानी है।
0: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए। और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
3: अरे
4: मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
0: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की। लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
5: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
0: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे। आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
1: अरे काट काट काट, हाँ तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
2: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं और पैसे कमाने हैं।

0: गर्मियों का मौसम था। लोग कहते, उफ, इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
1: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
2: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी ने।
3: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे, और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
4: हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा।
5: लगता है नदी क्रोधित हो गई है।
1: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी फसल बर्बाद,
5: सारी फसल बह गई।
4: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा,
5: सारा
4: सामान जल्दी से ऊपर ले जाना होगा।
5: चलो जल्दी ऊपर।
4: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो जल्दी चलो
5: चलो चलो।
4: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप वाप ना आ जाए।
5: ध्यान से संभल कर।
3: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
6: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी। बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
7: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार मुनीश शर्मा, कीमती आनंद, पूनम श्रीवास्तव और शशांक शर्मा। शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। श्रोताओं, आपको अवश्य ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है एक गांव की कहानी।

आज से लगभग 200 वर्ष पहले गढ़वाल की पहाड़ियों में एक गांव बसा था। गांव का नाम था रैणी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झरझर बहते झरने और नदी नाले थे। घाटियों में बहती हुई हवा फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला देती थी। बहुत ही सुंदर था यह गांव। इस गांव के लोगों का काम था खेतीबाड़ी करना और पशु पालना। उनकी सारी जरूरतें जंगल से ही पूरी होती थी। दिन भर जंगलों और खेतों में काम करने के बाद लोग जब शाम को अपने घर वापस आते तो उनके नृत्य और लोक गीतों की मधुर आवाज सारे पहाड़ों में गूंजने लगती। जंगल ही इनका सब कुछ था। उन्हें जंगल से वैसा ही लगाव था जैसा अपने परिवारजनों से था। जंगल के पेड़ उनके जीवन का अंग थे। उन्हें लगता कि पेड़ अक्सर कहते हैं, मैं पेड़ हूं, मैं पेड़ हूं, सदियों से मैं खड़ा जीवन देने के लिए। मैं ही बसंत और वर्षा लाता, हवा का अमृत मैं ही पिलाता, खुशहाली को मैं ही लाता। मैं ही जीवन हूं धरती का, मुझे नष्ट मत करो। मैं नष्ट हो जाऊंगा तो झरने सूख जाएंगे, धूल उड़ेगी और फिर बनेंगे रेगिस्तान।

0: रैणी गांव के लोगों का जीवन बड़े ही संतोष से बीत रहा था। इसी गांव में गौरा देवी नाम की एक युवती रहती थी। वो बड़ी बहादुर और मेहनती थी। गांव के और लोगों की तरह वो भी दिन भर जंगल में ही रहती। जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती, फल फूल कंदमूल और शहद इकट्ठा करती।
1: गौरा, अरे ओ गौरा, अरे कहाँ निकल गई है तू? अकेली जंगल में दूर मत जा।
2: अरे चाची, मैं यही तो हूँ। अरे चाची,
1: हाँ,
2: यहाँ आकर तो देखो।
1: हाँ हाँ,
2: कितने सारे छत्ते लगे हैं मधुमक्खियों के।
1: हाँ,
2: सबको यहीं पे बुला लो चाची।
1: हाँ हाँ,
2: सात आठ छत्ते तो होंगे ही।
1: अरे ओ रेवती, अरे सुनो तो, श्यामा।
3: हाँ चाची।
1: जिंदौरी।
3: हाँ चाची।
1: और हाय हाय, ये नाम तो मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। हाँ प्रसन्नी, अरे सब इधर आओ, जरा सुनो तो, ये गौरा क्या कह रही है।
3: आ रही हूँ चाची।
1: हाँ चाची।
4: क्या है चाची?
1: अरे
4: क्या हुआ?
1: कोई घबराने वाली बात नहीं है री। वो गौरा कह रही है कि सामने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं।
4: छत्ते? क्या मतलब?
1: हाँ हाँ छत्ते, वो भी दो तीन नहीं, बड़े बड़े सात आठ छत्ते लगे हैं। हाँ
4: सात आठ छत्ते, कमाल है।
3: अरे फिर तो मजा आ गया।
4: यानी अगर सारा शहद निकाल ले तो दो गगरी फिर तो हो ही जाएगा।
5: अरे हम कितने दिनों से खोज रहे थे शहद, अब तक कहीं नहीं मिला, और आज मिला है तो
3: छप्पर फाड़ कर।
4: तो आओ पहले शहद ही निकाल लेते हैं।
5: हाँ, हाँ, क्यों नहीं, शहद निकालने के बाद दांतों भी तोड़ लेंगे।
3: अरे आज गुलर भी तो तोड़ने हैं।
4: हाँ, हाँ, हाँ, चल चलते हैं।

0: जंगल में चीड़, देवदार, बांस, भैमल, असीन, तूण, तिमल और धौड़ के पेड़ थे। पुरुष खेतों में काम करते और स्त्रियां जंगलों में। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह गौरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई। गौरा और उसकी सहेलियां गूलर के फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गईं। घूमते घूमते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंची।
1: अरे गौरा, ये आवाज कैसी आ रही है?
2: आवाज? हाँ, आवाज तो आ रही है।

0: उसकी सहेलियां गूलर के फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गईं। घूमते घूमते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंची।
1: अरे गौरा, ये आवाज कैसी आ रही है?
2: आवाज? हाँ, आवाज तो आ रही है। अरे लगता है कोई पेड़ काट रहा है। मुझे तो कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वो देख गौरा। अरे हाँ, वो साल के बड़े पेड़ के पास।
3: हाँ वही,
2: न जाने कौन लोग हैं।
1: पता नहीं कौन लोग हैं।
2: अरे धीरे धीरे बोलो, कहीं वो हमारी आवाजें ना सुन ले। चलो और नजदीक चल के देखते हैं।
1: चलो खाकी पैंट, सिर पर टोपी और हाथों में बंदूक भी है।
3: राम,
1: ये गांव के लोग तो नहीं लगते।
2: अरे मुझे तो ये शहर के लोग लगते हैं, जो पेड़ काटने आए हैं।
1: अरे अरे देखो तो, उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटकर अलग से इकट्ठा भी कर रखा है।
2: हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग यहाँ चोरी से आकर अक्सर पेड़ काटते हैं। ऐसा है कि हम इन्हें जरूर रोकेंगे।
3: मगर कैसे? भला इतने सारे हथियारबंद लोगों को कैसे रोका जा सकता है? और वो हमें जान से भी तो मार सकते हैं।
2: अरे भले ही हमें जान की बाजी लगानी पड़े, इन्हें हर कीमत पर रोकना ही है। मगर इस समय इनके सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, गांव चलकर और लोगों को भी बुला लाते हैं। सुनो सुनो, मगर जिस रास्ते से हम आए हैं वो तो बहुत लंबा पड़ेगा। सामने वाले पहाड़ को पार करके चलते हैं।
1: अच्छा।
2: वो रास्ता छोटा लगेगा।
1: हाँ,
0: तो बस फिर क्या था, गौरा देवी अपनी सभी सहेलियों के साथ फौरन अपने गांव की ओर चल पड़ी। कटीली झाड़ियों में उनके कपड़े फट गए, खरोंचे लगी, प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया, पथरीली जमीन से पांव लहूलुहान हो गए। मगर बिना रुके वो दौड़ती रही, दौड़ती रही। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अपने पेड़ों को बचाना। थकी हारी जब वो गांव में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। पुरुष काम करने खेतों में गए हुए थे, इसलिए एक भी पुरुष उस समय गांव में नहीं मिला।
1: राम, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब क्या करें गौरा?
2: अरे गांव में मर्द नहीं है तो क्या हुआ, औरतें और बच्चे तो है ना। हमें उन्हीं को लेकर चलना होगा।
3: मगर ये औरतें और बच्चे।
2: अरे अगर मगर मत कर, क्या पेड़ हमारे भाई नहीं है? हम सब बहनें मिलकर अपने पेड़ भाइयों को बचाएंगी। नहीं तो सारा सत्यानाश हो जाएगा। अरे कोई है? अरे बाहर निकलो,
4: बाहर।
2: चाची।
5: हाँ क्या बात है?
2: बुआ जल्दी बाहर आए, शहर के लोग हमारा जंगल काट रहे हैं।
4: क्या जंगल?
2: जल्दी आओ,
4: अरे सवारी से पेड़ काटने नहीं
0: देंगे। और फिर गौरा देवी चल पड़ी जंगल को बचाने। उसके साथ 21 स्त्रियां और 7 बच्चे थे। सभी के सभी निहत्थे थे। उन्हें एक तरकीब सूझी। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जगह जगह पत्थरों के ढेर लगाकर उन्होंने रास्तों को लगभग बंद कर दिया, ताकि शहर के लोग यदि उन कटे पेड़ों को ले जाना भी चाहें तो ये संभव ना हो सके। अब सारी स्त्रियां आगे बढ़ी और पहुंची उस जगह पर जहां पेड़ काटे जा रहे थे।
2: सुनो, वृक्ष हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं।
4: बिल्कुल,
2: इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जिन वृक्षों के कारण हम सांस लेते हैं, अन्न लेते हैं, दवा लेते हैं, आज जब उन्हें काटा जा रहा है तो आओ अपने प्राणों की आहुति देकर इनकी रक्षा करें।

0: देखता हूँ सबको बड़ी बहादुर बनती है।
1: हम जान दे देंगे मगर तेरा को नहीं छोड़ेंगे। अरे देख के क्या हो, चला कुल्हाड़ी। अरे शिब्बा शिब्बा, तू तो हमारे गांव का ही है, मार अपनी बहनों को।
2: अरे साथियों देखते क्या हो, आगे बढ़ो और ये पकड़कर पैरों से अलग कर दो। अच्छे खुदा जय देवान जय आगे बढ़ो आगे बढ़ो।
3: इधर जंगल में ये हो रहा था और उधर आसपास के गांवों में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांवों से लोग हथियार लेकर वहां आने लगे। जब पेड़ काटने वालों ने देखा कि अब उनकी दाल नहीं गल सकती तो फिर क्या था, उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए।
4: चिब्बू भाग ले यहाँ से,
3: सभी ने गौरा देवी और स्त्रियों के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की।
5: वाह भैया गौरा ने तो बहुत कमाल का काम कर दिया,
6: ऐसी चिपकी पेड़ से किसने छोड़ा ही पेड़ को। अरे क्या बात
7: है भाई, गौरा
1: तो हम सबका कर्तव्य है।
3: दोस्तों इसी रैणी गांव से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की, जो आज सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया है।
8: एक गांव की कहानी अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम आपसे आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
9: और विमलेश को
8: कुसुमलता
9: जगबंधु
8: चेतना
9: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
8: नमस्कार, नमस्कार।
10: श्रोते हो, आताच आपण एनसीईआरटी द्वारे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग ऐकला। हा कार्यक्रम आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून प्रसारित करण्यात आला।

0: नमस्कार,
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत पहुंचेंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा।

0: अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को एसआई का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन से 28 मई को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घट कर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज आईएनएस महेंद्र गिरी है जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6वां नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आईएनएस महेंद्र गिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
2: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का तीसरा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉ. मोहन यादव ने कहा

0: कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमेरिका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
1: अपने दो वर्ष के अंदर जो छलांग लगाई ये केवल यहाँ का अभियान हमारे पूरी नहीं हुआ, अब मध्य प्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां ने एफडीआई के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस

0: 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर चल रहा है।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
2: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिए गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
1: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकिनगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रूपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं, जिसमें ईरान में कई जगहों पर

0: आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमरीका ने कहा है कि ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी मुंबई अस्मिता वाहिनी 2:30 झाली आहेत। नादब्रह्म शास्त्रीय संगीत स्मिता बर्वे यांचं गायन या कार्यक्रमात आज आपण ऐकणार आहोत। राग शुद्ध सारंग विलंबित ख्यालाची बंदी 1 तालात आई सब मेल द्रुत ख्याल 3 तालात अब मोरी तबला साथ प्रसून चॅटर्जी संवादिनी साथ सुधांशु घारपुरे। ऐकूया राग शुद्ध सारंग कलाकार स्मिता बर्वे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और इसके लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने असम के विदेशी न्यायाधिकरणों से विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ये बात कही। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष जांच दल से जांच संबंधी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को इस मामले में 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्रियों को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 6 लेन का यह देश का दूसरा सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है। इसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। यह स्वचालित और रोबोटिक मशीनों की सहायता से निर्मित देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर केवल 35 से 45 मिनट रह जाएगा। दोनों शहरों के बीच कार से यात्रा करने पर ₹275 टोल टैक्स लगेगा। एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों की अनुमति नहीं है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेजी से विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है। और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। एनसीसी के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियम कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की एक उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित एनसीसी की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान के टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी।

व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 बजे पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार एन को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। ये कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।

0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेस वे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
3: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे पर लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
4: Provisionally, we're looking at a 10% increase.
5: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है, ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
4: Other operating income is not included.
0: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
6: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के

0: में 4 अरब 14 करोड़ अमेरिकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: नागालैंड के चूमो केदिमा जिले के शुखोबी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध आईईडी विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक रूपेन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन ए आई आर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी हमलों की निंदा करते हुए अमरीका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। असम के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक साप्ताहिक कार्यक्रम में जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% वृद्धि के साथ 232 अरब डॉलर से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and US engage for balanced and commercially meaningful trade pact, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, dismisses media reports of deadlock in trade.

0: दिस इज आकाशवाणी। इन द प्रोग्राम
1: ये आकाशवाणी है, जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त
0: दीक्षा सक्सेना, आकाशवाणी कॉरेस्पॉन्डेंट।

0: भंडार मौजूद है, लेकिन हाल के दशकों में इन संसाधनों को अत्यधिक दोहन, घटती गुणवत्ता, सीमित विनियमन के कारण बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा है, जिससे भविष्य में जल की उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। बढ़ते शहरीकरण, वर्षा के बदलते पैटर्न और घटते भूजल स्तर के साथ सवाल उठ खड़ा हुआ है कि हम भविष्य के लिए जल को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। आज बचाया गया पानी का हर बूंद भविष्य के लिए सुरक्षा कवच है। हमारे देश की जल सुरक्षा केवल बड़े बांधों या नदियों पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि प्रत्येक नागरिक अपने घर में वर्षा जल का प्रबंधन कैसे करता है। वर्षा जल संचयन प्रणाली अपनाकर जहां पानी के लिए नगरपालिका की आपूर्ति पर निर्भरता घटाई जा सकती है, वहीं पर्यावरण संरक्षण में भी सक्रिय योगदान दिया जा सकता है। बढ़ते भूजल संकट ने प्रभावी प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। वर्षा जल संचयन के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। आज हम जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुमंत नारायण जी। स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद मैडम।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइन्स खुली हुई हैं। नंबर है 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में सुमन जी, हम ये जानना चाहेंगे कैच द रेन के बारे में। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जल संचय की अपील की थी लोगों से और कहा था कि वर्षा का जो बूंद बूंद जो है वो हमें बचाना चाहिए।

0: 7117 2371 7106 और 2331444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में सुमन जी, हम ये जानना चाहेंगे कैच द रेन के बारे में। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जल संचय की अपील की थी लोगों से और कहा था कि वर्षा का जो बूंद बूंद जो है वो हमें बचाना चाहिए।
1: ये भी कहा गया है कि क्या हमारे जैसे पुराने तालाब हैं या वाटर रिजर्वॉयर्स हैं जिनमें सिल्ट जमा होने से उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो क्या उस कैपेसिटी को हम डीसिल्ट करके उनकी कैपेसिटी को रिस्टोर करें ताकि अधिक से अधिक वहाँ पे मॉनसून का जल एकत्रित हो सके। और अंत में मैक्सिमम जितना हम वृक्षारोपण कर सकें ताकि इन वाटर रिटेंशन एरियाज के निकटतम जितना ग्रीन कवरेज बढ़ेगी उतना ही जल संरक्षण भी अधिक होगा।
0: हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से रवि जवालिया जी। रवि जी, अपना सवाल पूछिए।
2: हाँ जी, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार
2: जी, और विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ सर, आप कैसे हैं सर?
1: मैं ठीक हूँ रवि, आप बताएं। आप तो गंगा नगरी में हैं, आप तो गंगा की नगरी से बोल रहे हैं।
2: जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना, हरिद्वार गंगा की नगरी है, गंगा पवित्र नदी है राष्ट्र में। मैं जानना चाहता हूँ कि वर्षा का जल बचाने के लिए एक आम नागरिक उसमें किस प्रकार से अपना योगदान देना दे सकता है सर।
1: रवि जी, आपने तो जैसे मेरे मन की बात छीन ली, जैसे मैं सबको इस प्रोग्राम के माध्यम से सबको बताना ही चाहता था। और यदि मैं सबसे पहले बताऊं, हम लोग आप रवि जी कहाँ रहते हैं? आपकी कॉलोनी है, आपका अपना घर है, कैसे
0: हमारा संपर्क इनसे टूट गया, हालांकि ये हमारी बात सुन पा रहे हैं।
1: ओके, सो मैं ये मानता हूँ कि रवि जी किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, एक अपार्टमेंट में है। तो रवि जी, यदि आपका ऐसा है तो इस कॉलोनी में कम्युनिटी बेस्ड प्रत्येक घर में, जैसे हमारे वर्षा हुई, सारी छतों पे पानी बढ़ता एकत्रित होता है, क्या हम उसको पाइप के माध्यम से एक रिचार्ज पिट एक कॉमन एरिया में गड्ढे खोद के, मे बी 3x3x3 का गड्ढा खोद कर उसमें कुछ ग्रेवल और सैंड टाइप से डाल सके ताकि जल सभी छतों से जो बहे वो व्यर्थ होने के अपेक्षा में उस गड्ढे में एकत्रित हो जाए ताकि धीमे धीमे वो भूजल को भी बढ़ा सके।
0: भूजल का स्तर इससे बढ़ता है और भूजल का जो स्तर गिर रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है कि वर्षा जल संचयन किया जाए। तो क्या जो आम आदमी के लिए आपने जो बात बताई कि वर्षा जल का संचयन किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और कितना खर्च आएगा अगर हम वर्षा जल संचयन करना चाहें अपने घर की छतों पर तो।
1: थैंक यू मैडम, और इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे बचपन में हम लोग सर्वप्रथम पहले कहते थे कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए
0: जी।
1: कहते थे पहली बारिश से जो धूल निकल जाए, धूल मिट्टी निकल जाए, उसके पश्चात नहाना चाहिए। उसी तरह से जैसे हमारे छतों पे अगर धूल मिट्टी है तो फर्स्ट फ्लश जो अंग्रेजी में कहा जाता है वो फर्स्ट फ्लश का पानी सारी धूल मिट्टी को साफ कर दे। तो छतों पे अगर हमारे एकत्रित हमारे छत का एरिया निर्धारित होता है सभी के घरों के छत, उसको पाइप के माध्यम से जैसे मैंने पहले बताया नीचे ले जाएं, लूज सैंड ऑफकोर्स ये सब उस रीजन के हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन और जियोलॉजिकल कंडीशन, वहाँ कैसी भूमि कैसी है, वहाँ का एक्विफर लेवल कैसे, उस पर निर्भर करेगा। बट यदि मैं एक जनरल ज्ञान दूँ तो फर्स्ट फ्लश सिस्टम लगाएं, सैंड का प्रयोग करें, बजरी डाल लें ताकि पानी दलदल बनने के बजाय वो सीधे भूजल में जाए, और चारकोल या कार्बन फिल्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बोलूँ तो मल्टीपल लेयर फिल्टर, ताकि जो अगर कोई धूल मिट्टी आ रही है वो भी फिल्टर होके ताकि भूजल में जब जाए तो स्वच्छ पानी जाए। इसका खर्चा अंदाज

0: अजन अगर ये 3x3x3 का करते हैं तो मुझे बताया गया कि 10 से 15 हजार, ऑफकोर्स ये रीजन स्पेसिफिक होगा, वहाँ पे पत्थर के क्या है, भूमि कैसी है, उस पर निर्धारित करेगा, पर अंदाजन इतना खर्चा आना चाहिए, जो कि अगर हमारे एक कॉलोनी में हम बनाने की कोशिश करें तो एक सार्वजनिक रूप से ये शायद चूंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य, हमारे अपने भविष्य के निर्भर करता है इस इन चीजों पे, तो शायद मेरा मानना है कि हम इतना खर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।
1: हमारे दूसरे श्रोता हैं सासाराम बिहार से अमित
2: जी। नमस्कार, मेरा ये सवाल था कि जैसे हम लोग रेन हार्वेस्टिंग का जिसे सरकार की तरफ से कुछ जिसे कैसे अभी घर सुर घर योजना के तहत बहुत व्यापक तौर से इसको व्यापक तौर पर सरकार प्रचार प्रसार करे, उसी टाइप से इसको भी एक लेकर जल संचय को लेकर बहुत लोग सोचते हैं कि घर में हम रेन हार्वेस्टिंग करें या फिर अपने कॉलोनी में जैसे सर अभी बता रहे थे इसको संचय करने का क्या तरीका हो सकता है, कैसे इसमें सरकार कुछ सब्सिडी दे ताकि अधिक से अधिक लोग इस ओर झुकाव करें और बचाने के लिए इस बारे में सोचे।
0: अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का, और आपके माध्यम से मैं आपके सभी अपने सभी भाइयों बहनों और बाकियों को भी ये बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने जल संचय जन भागीदारी नाम की एक अभियान का इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत हमारा प्रयत्न है कि कैसे, जैसे ये नाम ही सजेस्ट करता है, जल संचय जन भागीदारी, तो कैसे अधिकाधिक इसमें जनता, समुदाय, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाएं, उद्योग और जो कहते हैं ना नॉन गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स, उनका भी अधिक से अधिक इसमें वो सम्मिलित हो सके। और सम्मिलित होने का मतलब ये है, जैसे इसमें कई उदाहरण भी मैं देना चाहूंगा
1: जी।
0: कुछ एग्जांपल अगर बोलूं तो छत्तीसगढ़ का कोरिया डिस्ट्रिक्ट है, और इसको माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने एक और मन की बात में भी इसका जिक्र किया है। वहां के किसानों ने अपने 5% भूमि जल संरक्षण के लिए यूटिलाइज किया। उसी क्रम में जैसे बानसकांठा डिस्ट्रिक्ट है, वहां की बानस डेयरी ने वाटर कंजर्वेशन के लिए अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया। मैं इस तरह एग्जांपल दे सकता हूँ, नॉर्थ त्रिपुरा में एक कम्युनिटी करीब 500 घर हैं, वहां कम्युनिटी ने मिलकर ही अपने सभी घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाया और इम्प्लीमेंट किया। तो सरकार तो अपना काम कर ही रही है, मगर सबसे बड़ी बात इस अभियान का या इस इनिशिएटिव का मैं बोलूं तो इसमें जन जागरूकता एक, जन पार्टिसिपेशन दो, एंड कम्युनिटी ओनरशिप, ताकि ये मेरा भविष्य है, मेरे बच्चों का भविष्य है,
1: मेरी जिम्मेदारी है,
0: उस पे जोर डाला जा रहा है। और अधिकाधिक आप सभी जगह जान के ये खुशी भी होगी कि JSJB जल संचय जन भागीदारी के सीरियल जो 1.0 था, जो कि 24 से 25 में था, 31 मई 2025 को खत्म हुआ था। माफी चाहूंगा यदि मेरा जवाब ज्यादा लंबा हो रहा है, बट जनता को बताना भी जरूरी है कि जो
1: है।
0: जी तो 10 लाख का टारगेट, मतलब इस पीरियड में इतने आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था जन भागीदारी से, और जो मैंने बानस काठा का एग्जांपल दिया और जो अदर एग्जांपल जी, 10 लाख के अगेंस्ट करीब 25 लाख से अधिक स्ट्रक्चर्स बने, और उसका एक आकलन के हिसाब से 2.4 बिलियन क्यूबिक मीटर रिचार्ज हुआ। अगर मैं इसको एक इक्विवेलेंस के टर्म में बोलूं तो एक रंजीत सागर डैम है थेम रावी रिवर पे, या उसकी कैपेसिटी करीब इतनी है। तो ये मानना होगा कि 6-8 महीने में, सितंबर से लेकर मई तक, इतने स्ट्रक्चर्स बने कि उसने एक, और जन भागीदारी से बने कि उसने एक डैम के बराबर का
1: पानी इकट्ठा,
0: जल इकट्ठा एक्वीफर में कर दिया।
1: बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और ये भी प्रेरणा
0: है, ये सभी के लिए हौसला अफजाई का भी है, और हमको ये आगे के लिए भी इंस्पायर करती है कि हम कैसे और से आगे कर सके।
1: फोन लाइन पर उड़ीसा से है अब देशदीप दास। देशदीप जी आप हमें सुन रहे हैं
3: जी। नमस्ते जी, नारायण जी और कनकलता जी, मेरा सादर नमन आपसे।
1: नमन
0: प्रणाम आपको भी देशदीप जी।
3: जी नमस्ते जी। जी मेरा सवाल है
1: जी,
3: एक सामान्य आवासीय घर या बड़ी

0: इमारत के लिए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने में कितना खर्च आता है और इसके मुख्य कंपोनेंट्स क्या है?
1: देशदीप जी धन्यवाद। मैं मुख्य कंपोनेंट्स आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को दोबारा बता देना चाहूंगा कि इसके मुख्य आम तौर पे जो फिल्टर सो छत में पानी जो एकत्रित हुआ उसको एक पाइप के माध्यम से नीचे ले गए जमीन के स्तर पे और जमीन में एक रिचार्ज पिट बनाया जिसमें फिल्टर लगाया जो मैंने फर्स्ट फ्लश सिस्टम बताया। फिर मैंने सैंड का सो ताकि सैंड ऊपर फाइन मटेरियल हो नीचे ग्रेवल हो ताकि वो पानी को दलदल ना बने या मिट्टी इकट्ठा ना हो तो और धीमे धीमे सीप करे। इस तरह से बड़ी ही सिंपल तरीके से एक आम नागरिक आपके और मेरे जैसे लोग इस भूजल को मतलब रिचार्ज करने के लिए प्रत्येक नागरिक प्रत्येक समुदाय प्रत्येक समाज इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। बहुत ही सिंपल प्रणाली है, इसको अपनाएं और अपने और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें।
2: एक बात और बताइए कि क्या ये जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है ये सिर्फ नई इमारतों में ही लगाया जा सकता है या जो पुराने घर बने हुए हैं कहीं पर भी इसको स्थापित किया जा सकता है?
1: मैडम इसको कहीं भी लगाया जा सकता है क्योंकि जब वर्षा होती है जी। वो पुराने और नए घरों में डिफ्रेंशिएट नहीं करती, वर्षा तो प्रकृति से आ रही है। ये हमको ध्यान देना है कि जो पुरानी अगर इमारत है तो जो छत है उस कितनी समतल है क्या स्लोप है उससे वो निर्धारित ताकि जो पाइप में जो पानी एकत्रित हो इधर उधर एकत्रित होने के बजाय पूरा अधिक से अधिक जल पाइप के माध्यम से भूजल तक पहुंच जाए। शॉर्ट आंसर देयर इज नो डिफरेंशिएशन, लॉन्ग आंसर मैंने आपको बताया।
2: इस तरह का जो पानी जो इकट्ठा किया जाता है वो क्या पीने में और खाना बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है?
1: बहुत ही अच्छा सवाल किया मैडम आपने। इस तरह से पानी हम लोग ये सोचेंगे कि अगर जैसे फर्स्ट फ्लश से सारी धूल मिट्टी निकल गई फिर हम इसको भूजल में रिचार्ज करें। अगर हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया है, फिल्टर्ड ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ है, इनफैक्ट आज भी जो हम दोहन कर रहे हैं जिन भी डिस्ट्रिक्ट्स में या गांवों में या ब्लॉक्स में हम दोहन कर रहे हैं ग्राउंड वाटर दोहन कर रहे हैं वहां तो हम आराम से इस्तेमाल कर रहे हैं,
2: उसी तरह से भी कर सकते हैं। रमाकांत वाजपेयी जी हैं उत्तर प्रदेश से।
3: नमस्कार
2: रमाकांत जी।
1: नमस्कार
3: रमाकांत
1: जी। नमस्ते।
3: मैं ये पूछना चाहता था कि जिस तरह से जल सुरक्षा और जल पुनर्भरण भूगर्भीय जल पुनर्भरण, तो जल सुरक्षा का मतलब है कि जब हम एक लीटर पानी खर्च करते थे आज उस जगह जो है नए व्हीकल आ गए, नए नई परंपराएं हो गई, नई चीजें, इनमें हजारों लीटर पानी खत्म होता। और दूसरी चीज है भूगर्भीय जल पुनर्भरण, तो कंक्रीट का सड़क, कंक्रीट की गली, ऊपर से नीचे पानी जाता नहीं है, कुंड टूट दिए गए हैं, तो बताइए कैसे जो है जल पुनर्भरण हो।
1: रमाकांत जी आपने बिल्कुल सही बात की कि हमारी डिमांड्स बढ़ रही हैं, हमारे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, हमारे समुदाय बढ़ रहा है, उनकी ग्रोथ जरूरी है और कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो इन सब के लिए जल तो अति आवश्यक है। सो आपकी मेरी कनक लता मैडम की और पूरे समुदाय की यह जिम्मेदारी भी है कि कैसे हम अधिक से अधिक जल को संरक्षण कर सकें, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, चाहे समुदाय के तौर पे हम कंटूर ट्रेंचेस बनाएं या देर आर मतलब कई सारे तरीके होते हैं आर्टिफिशियल कृत्रिम स्ट्रक्चर बनाने के। एक उनमें से है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दूसरा कि जैसे किसान मैंने कोरिया वाला बताया अगर कंटूर ट्रेंच बना ले या रिचार्ज पिट बना ले। सो ये छोटे छोटे तरीकों से जैसे जमीन हुई जैसे इकोसिस्टम हुआ उस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया, पानी का संरक्षण किया, भूजल का अपग्रेडेशन हुआ और साथ ही साथ ऐसे समझे कि जो बारिश अगर सरफेस रन ऑफ या पानी का व्यर्थ बह जाती वो पानी

0: मैंने एकत्रित कर लिया जो मैं अपने भविष्य में इस्तेमाल कर सकता
1: हूँ। भविष्य के लिए निवेश है,
0: भविष्य का बिल्कुल निवेश है। जैसे हम पिगी बैंक में अपना एक एक पैसे डालते हैं,
1: बच्चे डालते हैं,
0: बिल्कुल उसी तरीके से हम अपने भविष्य के लिए एक एक बूंद को, जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा कि एक एक बूंद को बचाना है, उसी तरह हमारे प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी हो जाती है।
1: हर बूंद कीमती है।
0: जी बिल्कुल।
1: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप इस पर सवाल भेज सकते हैं। नंबर है 2331048 2371711 2371716 और 2331444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। अब हमारे साथ अगले श्रोता की अभी प्रतीक्षा है, तब तक आप हमें ये बताइए सुमंत जी कि जो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो प्रोसेस है, जो प्रणाली है, इसका रख रखाव भी क्या कठिन होता है, किस तरह करते हैं?
0: मैडम बिल्कुल आपका सही सवाल है कि बट जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बनाना, उसको कंस्ट्रक्ट करना या एस्टैब्लिश करना जितना सिंपल है, रख रखाव उससे भी अधिक मैं कहूँगा सिंपल है कि बस साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर 6-8 महीने में एक बार, जैसे मॉनसून से पहले एक बार सफाई कर दिए ताकि वो रिचार्ज होने के लिए, जैसे कहते हैं ना, तैयार होए, तो वो साफ सफाई हो गई, धूल मिट्टी हट गई, अगर कोई एक्स्ट्रा कुछ गर्द आ गई हो वो साफ हो गया, ताकि जब जल आए वो धीमे धीमे भूजल पे मतलब अपग्रेड हो जाए,
1: स्तर ऊपर
0: हो जाए।
1: वर्षा जल संचयन योजना 2025 की काफी चर्चा है, आप इसके बारे में श्रोताओं को थोड़ा विस्तार से बताइए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैंने पिछले उत्तर में शायद आधा ही बताया था कि जैसे JSJB जल संचय जन भागीदारी 1.0 जो 2024 से 25 चली, उसमें क्या हुआ। अब ये अवसर मुझे आपके प्रश्न से मिलता है कि 2025 से 26 जो जल संचय जन भागीदारी, जिसको हम 2.0 कहते हैं, वो 1 जून 2025 को स्टार्ट हुई थी और 31 मई 2026 को खत्म हुई है। उसके अंतर्गत भी देश से बहुत करीब 700 डिस्ट्रिक्ट्स, वहां पे वहां की जनता ने, वहां के क्राउड ने, वहां के डिस्ट्रिक्ट्स ने, वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने, वहां की इंडस्ट्री ने, वहां के एनजीओस ने, सब ने मिलकर जो आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया रूफ टॉप रेन वाटर या हार्वेस्टिंग, या फिर जैसे रिचार्ज पिट हुआ या रिचार्ज शाफ्ट हुआ, इस तरह के जो करीब 18-19 तरीके के लो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स हैं, 1 करोड़ का टारगेट हमारा, हमने इंटरनली जो हमारे लिए सेट किया गया था, उस 1 करोड़ टारगेट के अगेंस्ट पूरे भारतवर्ष से करीब 1.5 करोड़ स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं।
1: ज्यादा बन गए,
0: मतलब
1: जितना लक्ष्य था
0: उस लक्ष्य से करीब 50% अधिक बने। और मैंने बताया ना कि अगर 2.4 BCM जो कि करीब 23-24 लाख स्ट्रक्चर से बने थे जितना रिचार्ज हुआ था, तो हम अभी ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका कितना फायदा हमारे आने वाले समय में दिखेगा। सो इसमें भी जन समुदाय भागीदारी, नॉन गवर्नमेंटल, ऑफकोर्स सरकार तो कंट्रीब्यूट कर ही रही है, बट सभी लोगों
1: की भागीदारी बहुत
0: बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई भी कहते ना, कोई भी, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी ये फोकस है कि जैसे इसको मास मूवमेंट बनाया जाए, कैसे इसकी जन ओनरशिप, कम्युनिटी ओनरशिप हो, ये हमारा भी प्रयत्न है कि इसको हम आगे से आगे कैसे लेके जा पाए। इनफैक्ट आज जो आपका रेडियो का कार्यक्रम है
1: जी,
0: ये एक अपने आप में एक माध्यम है कि लोगों की अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाए, लोगों को कैसे पता चले कि आप जैसे आपके स्टूडियो में मैं 3-4 लोगों को देख सकता हूं, जब हम अपने घर जाएं, क्या हम कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे।
1: आपने कहा लोगों तक हम पहुंच सके। देखिए शिमला से एक सवाल आया है राकेश जी का। राकेश जी
2: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला जिले की कोटखाई से।
1: नमस्कार।
2: और मेरा एक प्रश्न

0: ये है कि जैसे कि हमारे सर्दी में जो कई बार जो है माइनस में तापमान चलता है और हमारी जो है बर्फबारी होती है काफी कोटखाई क्षेत्र में, तो मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो बर्फ का जो पानी है उसको किस तरह से जो है संरक्षण किया जा सकता है।
1: राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का, बिकॉज आप शिमलाई के लिए नहीं, ये प्रश्न मेरे ख्याल से हमारे पहाड़ी राज्यों में कई डिस्ट्रिक्ट्स पे ये लागू किया जा सकता
2: लद्दाख
1: है।
2: के बारे में बताइए।
1: आई एम सो ग्लैड आपने पूछा। इनफैक्ट लद्दाख का एक अभी कुछ हफ्तों पहले ही मुझे एक एग्जांपल बताया गया था कि लद्दाख में कैसे लोग अपना वाटर कंजर्वेशन या जल संरक्षण कर रहे हैं। वहाँ डिटेल्स तो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, मगर जल स्तूपा का कॉन्सेप्ट वो लोग लाए हैं कि एक बर्फ के एक स्तूप बनाते हैं और उस स्तूप से ताकि वो धीमे धीमे जब वो पानी गलता जाए तो विंटर में जाड़ों में वो पानी एकत्रित हो गया, बर्फ बन गई, और वो समर में जब वो गलना स्टार्ट होती है तो धीमे धीमे पाइप के माध्यम से मेन स्ट्रीम में ले जाया जाता है। तो राकेश जी आपने बहुत सही सवाल पूछा कि हम शिमला हो, लद्दाख हो, सिक्किम में ये सब एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ऐसी गुड प्रैक्टिसेस अपनाई जा सकती हैं। हमने सभी राज्यों से शेयर भी किया है और आप वेबसाइट भी अगर अपने वेबसाइट देखेंगे तो भी आपको इसके विस्तृत जानकारी मिल सकती है। बट बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का।
2: एक और श्रोता हमारे साथ है, विवेक। विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। विवेक जी
3: नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव जयपुर से बोल रहा हूँ
2: जी।
3: सर मेरा प्रश्न ये था, जैसे सोलर के लिए बहुत मार्केटिंग है, काफी लोग फोन आते हैं, हम लोग उस पर करा भी लेते हैं, बहुत सोलर के लिए जैसे अच्छे रेस्पॉन्स है, इस तरह के हम लोग जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या कोई टोल फ्री नंबर या कुछ संस्थाएं सरकारी प्रेरित करें, हमें बताएं कैसे लगाएं, हम क्या करें, तो एक यूजर फ्रेंडली जो चीज होना तो इसको करा जा सकता है।
1: विवेक जी बहुत सही सवाल है कि आम नागरिक के लिए इसको कैसे आसान किया जाए। तो आपको और मैडम आपके माध्यम से बाकी श्रोताओं को भी ये जानकर बताने से मुझे हर्ष हो रहा है कि देश भर में करीब 700 जल शक्ति केंद्रज हैं। जैसे हमारे कृषि विज्ञान केवीकेज हैं
2: जी,
1: उसी तरह जल शक्ति केंद्रज हैं। हर अब ये जयपुर से कर रहे हैं तो मुझे उनका टोल फ्री नंबर नहीं पता है, मगर डिस्ट्रिक्ट में जल शक्ति केंद्र में तो एक टोल फ्री नंबर है, आप उनको फोन करें, आपको जो सिंपल तकनीकी राय लेनी हो कि हम कैसे संरक्षण, बिकॉज जयपुर की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है अपितु शिमला से या उत्तर प्रदेश जो हमारे डिफरेंट श्रोता हुए हैं, तो आपको रीजन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सबसे आसान और सुविधाजनक समाधान होगा वो आपको आपका जल शक्ति केंद्र ही बता सकता है लोकल रिक्वायरमेंट।
2: जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुमंत नारायण। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। सुमंत जी, मिशन अमृत सरोवर की चर्चा होती है और अटल भूजल योजना की भी चर्चा काफी हो रही है, ये सारी जो पहले हैं सरकार की ओर से की जा रही हैं ताकि वर्षा जल का संचयन किया जा सके, भूजल के स्तर को बढ़ाया जा सके, इन सब के बारे में आप कुल मिलाकर क्या कहना चाहेंगे?
1: धन्यवाद मैडम आपके इस सवाल का। आप यही समझे कि जो होल ऑफ गवर्नमेंट होल ऑफ सोसाइटी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये मोटो है कि कैसे सरकार के सभी अंग होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से अडॉप्ट करके बनाए, उसी के अंतर्गत आपने अमृत सरोवर बोला या अटल भूजल योजना बोली, एक एक सरकार का अंग ये कंट्रीब्यूट कर रहा है कि कैसे भूजल, कहीं पे सरोवर बनेगा कि बड़े सरोवर बने, कहीं पे भूजल डायरेक्ट इंजेक्शन वेल से चला जाए, किसी और स्कीम के अंतर्गत अगर रिचार्ज पिट बन जाए, या अगर मैं होल ऑफ सोसाइटी की बात करूं तो अगर मैं रायपुर का एग्जांपल दूं तो वहां पे इंडस्ट्री एसोसिएशन ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बनवाए, इस तरह

0: में एग्जांपल्स, देश भर में अनगिनत एग्जांपल्स हैं जो जन भागीदारी होती जा रही है, मगर अभी रास्ता लंबा है। हम सबको अपना, रिपीट कर रहा हूं, मगर अपना और अपने बच्चों का भविष्य इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सुदृढ़ करना आवश्यक,
1: बच्चों को भी जागरूक किया जाना चाहिए इसके लिए।
0: Absolutely. कहते हैं ना कि बच्चों से ही जितना बिहेवियर चेंज होता है वो सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो बच्चों के सिलेबस में
1: इसको जोड़ा जाना चाहिए,
0: कई कक्षाओं में जुड़ा हुआ है, जैसे छठवीं सातवीं कक्षा के सिलेबस में चैप्टर्स हैं। इसको हम और अवेयरनेस मॉडल्स, जैसे एक ये रेडियो प्रोग्राम हुआ या यूट्यूब हुआ या सोशल मीडिया हुआ,
1: आकाशवाणी पर भी इसके बारे में प्रचार किया जा रहा है।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी पे डेली जिंगल्स चल रहे हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे शामिल हो सकते हैं, कैसे इस मिशन को या अभियान को हम और इंटेंसिफाई कर सकते हैं।
1: सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में भी प्रभावी भूजल प्रबंधन आवश्यक है, और जैसा कि आपने बताया कि जो बावड़ियां हैं पुरानी, उन सबको भी, उनका भी पुनरुद्धार करने की कोशिश चल रही है ताकि वर्षा जल का संचयन किया जा सके। अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुमंत नारायण, स्टूडियो में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? कार्यक्रम के संबंध में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है aarnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कनकलता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
0: नमस्कार आकाशवाणी को।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक

0: रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फूक वॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने कहा कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय दूतावास ने इस कठिन समय में सहयोग और सहायता के लिए वियतनाम सरकार और वहां के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 6 अब भी लापता हैं। राज्य के मत्स्य मंत्री राजेश महतो ने कहा कि सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाज और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। अंडर 19 में 8 महिला खिलाड़ी फाइनल में पहुंच चुकी हैं। पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल टुडे डिसमिस्ड मीडिया रिपोर्ट्स ऑफ अ डेडलॉक इन इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स, कॉलिंग देम एज कंप्लीटली फॉल्स, बेसलेस एंड मिसलीडिंग। In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said he had a fantastic meeting with the US trade representative Jameson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said, both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Piyush Goyal today began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Ministry of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the Indian-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion US dollars.